फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार।
2: ये है विविध भारती।

पहले सुनिए चिंतन। चिंतन में आज दार्शनिक सुकरात के विचार। सुकरात के अनुसार भौतिक धन दौलत से ज्यादा इंसान को अपनी आत्मा और चरित्र को शुद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए। ये था चिंतन। और अब वंदनवार में आप सुनेंगे भक्तिपद।

सुनो सुनो है कृष्ण काला, सुनो सुनो है कृष्ण काला, आई तुम रे द्वार।

अब कासे कहूँ दुख सारा, सुनो सुनो है कृष्ण काला, मेरे पाँव तो हो

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आपसे थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का 265वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा, कलाकार पंडित सी आर व्यास, इसका भाग 4 प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। सुबह 7 हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत 7:30 पर आप सुनते हैं हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय सुबह 8:15 और दोपहर 2 आलेख और स्वर राजेंद्र त्रिपाठी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 पर। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक सोनू निगम पर। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम होगा आज के मेहमान पार्श्व गायक मुकेश की याद में गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2 प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता है जुबैर खान। दिन में 11 रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और दोपहर 1 आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 3। आज के विषय रहेंगे बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां। कहानी पद्मश्री की डॉक्टर बुधरी ताती पर आज ये चर्चा होगी। मुझे कुछ कहना है मैं थूकने की बुरी आदत पर बातचीत होगी और जलने कटने पर उपयोगी टिप्स दिए जाएंगे। आज का प्रोग्राम पेश करेंगी सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर बाद 4 फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुनेंगे, संवादक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। संध्या 5 छाया गीत का पुनः प्रसारण 5:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। संध्या रंजन संध्या 6:35 पर, जयमाला का वक्त है संध्या 7 और संध्या 7:45 पर इंद्रधनुष में आप सुनेंगे इनसे मिलिए आज पार्श्व गायिका सोनाली वाजपेयी से गणेश शर्मा की बातचीत प्रसारित होगी। रात्रि 8 हवा महल में सुनिएगा झलकी बलि का बकरा, लेखक निर्देशक मुकुल गोस्वामी। रात्रि 9 आप सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए और रात्रि 10 छाया गीत का प्रसारण होगा, आलेख और स्वर जी श्याम का। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात और 11 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। जरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। आज सुनिए भाग 265।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का 265वां भाग।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। प्रस्तुत करता है जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास।
1: नमस्कार, अभी गौड़ सारंग के बारे में बात करेंगे। एक गौड़ क्या है, एक सोचने की बात है। गौड़ बिलावल है, गौड़ सारंग है, गौड़ मल्लार है, ऐसे जो गौड़ के प्रकार है उसमें एक बात ध्यान में रखने की है कि जिसमें ये म्यूजिकल फ्रेज आती है, सारे सागरे मगा मरे ग सागरे मगा, ये संगति जिसमें है वो गौड़ का अंग है। अभी गौड़ सारंग में एक बंदिश पेश कर रहा हूँ मैं। ये बंदिश ऐसे है कि इसमें थोड़ा सा एक पुरानी बंदिश है,

अभी ये बंदिश में यह राग का बंद ये मुखड़ा जो सम जो आती है ना दैवत पे आती है, बहुत कम सुनाई देती है ऐसी बंदिश, लेकिन ये बंदिश में दैवत ऐसा रखा है तो एक सोचने की बात है कि गौड़सारंग में दैवत पे बंदिश कैसी रखी है, ऐसे लोग पूछते हैं। लेकिन अभी पुराने जमाने में जो कलाकार थे उसने ये सोच के करा किया है तो हमको तो ये मानना चाहिए कि ऐसा हो सकता है।

और एक संगति आती है इसमें, जो निषाद पे बहुत ही स्ट्रेच कर रही है, छांड दे मोरी मैया। बहुत सारे कम लोग ये नहीं बताते हैं, लेकिन ये बताने में कोई हर्ज नहीं। जहाँ तक हमारी पुराने बंदिश में ये जगह रखी है, तो ऐसा उसका विस्तार करने में कोई नुकसान नहीं है। अभी गौड़ सारंग, गौड़ बिलावल की एक बंदिश

मिलावल समय है, बाकी एक गौड़ की संगति रखा है उसके लिए उसको गौड़ मिलावल कहते हैं। गौड़ सारंग की दूसरी बंदिश है,

कहने का मतलब ये कि गौड़सार में घर में को संगति बहुत ही प्रोमिनेंट है और इसको बार बार दोहराना चाहिए, तब ये राग का नक्शा जो है, फेस जो है, बराबर दिखेगा।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा इस श्रृंखला की चौथी कड़ी अभी आपने सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास। हारमोनियम पर इनके साथ संगत की पुरुषोत्तम वालावलकर ने और तबले पर साथ दिया मुकुंद राजदेव ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर

साथियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप

0: देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलुओं का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायन और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार के नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को करेंगे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगा जन आंदोलन। ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज नई दिल्ली में होगा MOU। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण। चुनाव के लिए प्रशासन ने की पुख्ता व्यवस्था। और प्रदेश में किसान आंदोलन खत्म। राज्य सरकार अब 60% तक खरीदेगी मूंग। मूंग खरीदी की अंतिम तारीख भी बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त फॉर विकसित भारत

0: संकल्प का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस अभियान का नेतृत्व माय भारत प्लेटफॉर्म करेगा, जो एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच है। इस मंच का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें नेतृत्वकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आज नई दिल्ली में दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश शासन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। ये प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्लस्टर करीब 350 एकड़ में विकसित होगा, जिसमें मोबाइल उपकरण, नेटवर्क इक्विपमेंट और 5G 6G अनुसंधान की सुविधाएं होंगी। भारत सरकार ने इस परियोजना के पहले चरण के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। इस परियोजना से करीब 12 से 15,000 करोड़ रुपए के निवेश और 5,000 करोड़ के रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है और 5,000 रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 7 अगस्त से शुरू होगा। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कलेक्टरों और संभागायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बार कलेक्टरों से संवाद करते हुए उन्होंने अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वार्ड और पंचायत स्तर पर इकाइयां बनाकर शिविर से पहले ही लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि हर शुक्रवार अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई के लंबित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। ये महोत्सव किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए हर जिले में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 15 जुलाई को इंदौर से इस राज्य स्तरीय महोत्सव की शुरुआत की थी। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। इस महोत्सव में किसानों को ड्रोन से खाद छिड़काव और स्मार्ट सिंचाई जैसी तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। ये शाम 6 बजे तक चलेगा। कल सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज से 291 मतदान केंद्रों के लिए निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया। दतिया विधानसभा के 36 सेक्टरों में सेक्टर अधिकारियों के साथ चिकित्सा अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। स्वीप आइकन सारिका खारू ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। भाजपा ने संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर कल देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूरे प्रदेश में एक साथ दीपोत्सव आयोजित कर संत रविदास को श्रद्धांजलि दी गई। ये अभियान अगले साल 20 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में 6 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। रेल विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सीहोर स्टेशन पर 10 अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव भी उपलब्ध कराया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय ज्ञान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय की अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार अब हर पात्र किसान से 25 के बजाय 60 फीसदी तक मूंग खरीदेगी। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी होगी। कल रात मंत्रालय में हुई बैठक के बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। मूंग खरीदी की अंतिम तारीख अब 20 अगस्त होगी। कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने बताया कि ई टोकन व्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को हमेशा उच्च स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री कल देर शाम उज्जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदसौर में आयोजित गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उज्जैन के सांदीपनी आश्रम की महत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि सांदीपनी विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 25,000 करोड़ रूपये की राशि से सांदीपनी विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने मंदसौर में गौ संरक्षण कार्यक्रम चला रहे गुरु पंडित भीमा शंकर शास्त्री की भी सराहना की।
3: 60 सांदीपनी विद्यालयों की सौगात मिल रही, 39 शिक्षा विभाग के और 21 जनजाति विभाग के। सरकारी स्कूल बारिश के समय तो लगते ही नहीं थे, लगे तो टाट पट्टी घर से ले जाना पड़ती थी या टाट का बोरा घर से ले जाना पड़ता था, बड़ा कठिन दौर रहता था। इसलिए ये मानवता के दृष्टिकोण से भी हमने अपने विद्यालयों का नाम सांदीपनी विद्यालय रखा है। 2 साल के अंदर जो पहले और दूसरे चरण के विद्यालय बन रहे हैं, 25,500 करोड़ की लागत हमारी सरकार के माध्यम से खर्च करने वाले, जोरदार अभिनंदन कर 25,500 करोड़ के।
0: प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। बड़वानी पुलिस ने जिले के विद्यालयों में चित्रकला और स्लोगन लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिनमें विद्यार्थियों ने 16,700 ड्राइंग शीट्स तैयार की हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने इस पहल को मान्यता देते हुए बड़वानी पुलिस का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया है। सावन माह की शुरुआत आज से हो गई है, इसका समापन 28 अगस्त को होगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। महाकाल की पहली सवारी 3 अगस्त को निकलेगी, जबकि अंतिम राजसी सवारी 7 सितंबर को होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोर सिंगनाथन ने रजत पदक जीता। इससे पहले मुरली श्री शंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में रजत पदक जीता। वे राष्ट्रमंडल खेलों में इस स्पर्धा में 2 बार पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन होगा, इसके लिए शहर में तैयारियां जारी हैं। इंदौर में 3 अगस्त को रोजगार मेला लगेगा, इसमें युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार की जानकारी दी जाएगी। खंडवा में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम हुए। आगरमालवा के नए कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने अधिकारियों की बैठक ली, उन्होंने योजनाओं की प्रगति भी जानी। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण हुआ, ये एक मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। सतना में श्रमिकों के लिए आयुष्मान कार्ड शिविर लगाया जा रहा है, इससे उन्हें मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: यह आवाज थी उमा देवी की और फिल्म का नाम था चंद्रलेखा।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं सी रामचंद्र का संगीत, PL संतोषी की गीत रचना, चितलकर और लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म का नाम सरगम।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज सुरैया की फिल्म का नाम दास्तान। इसे शकील बदायूनी ने लिखा और धुन बनाई है नौशाद साहब ने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुति कार्यक्रम हम हैं इराही प्यार के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत।

ये स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है सूरज। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन।

0: समझ हो कैसे समझा।
1: फिल्म सूरज का दुगाना अभी आपने मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गायफा सुना।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये दो गाना सुना। स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के थे। फिल्म का नाम था शागिर्द।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण ते भवन सुआयो विनायक करो ये नसीती विने धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

गुलशन बावरा के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की धुन, युगल स्वर लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के थे फिल्म परिवार के लिए। हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: फिल्म फर्ज का दो गाना अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: और आइए अब सुनते हैं शकील बदायूनी की रचना, नौशाद साहब की धुन, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। फिल्म का नाम है पालकी।

हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिलन का दो गाना, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत आनंद बख्शी का है और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
5: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
6: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
4: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती का अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान

0: आकाशवाणी समाचार पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूर संचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूर संचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानकथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और

0: मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विद स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammad Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. The Lok Sabha has passed the Anti-Paper Leak Bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
3: The earlier bill and the amendment are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
2: Polling has begun for by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Voting is taking place for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh. In Bihar, voting is underway for the by-election to the Bankipur assembly constituency in Patna. Our correspondent reports that voters have been arriving at polling stations since early morning to cast their votes.
4: Polling is progressing peacefully across all 422 polling booths of 164 polling stations in the Bankipur Assembly constituency. Polling will continue till 5 p.m. A traditional stronghold of Bharatiya Janata Party, the seat is witnessing a contest among 25 candidates this time. A total of 3,79,616 voters will decide the electoral fate of the candidates. Although the main contest is believed to be between BJP's Neeraj Kumar, Jan Swaraj's Prashant Kishore, and Rashtriya Janata Dal's Rekha Kumari. The by-election was necessitated following the resignation of BJP's national president Nitin Naveen from the assembly seat. Counting is scheduled on 3rd August. Savita Parekh, Akashwani News, Patna.
2: Bihar government has decided to reopen the closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. A proposal to this effect was approved at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Samrat Chaudhary yesterday. Briefing the media, Additional Chief Secretary Arvind Kumar Chaudhary said that the cabinet also approved the Bihar Sports Policy 2026. The meeting also approved the implementation of schemes worth more than 97 crore rupees under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana for the financial year 2026-27. In the urban development sector under Amrit 2.0, around 53 crore 71 lakh rupees was approved for the Kishanganj water supply project and more than 150 crore 96 lakh rupees for the Lakhisarai water supply project. The cabinet also decided to establish Pakka vermicompost, gobar biogas and commercial vermicompost units in all districts of the state.
5: Under the scheme, approval has been given for the implementation of Pakka vermicompost units, dung and biogas units, and commercial vermicompost unit schemes across all 38 districts of the state. For this, an approval of 30 crore 17 lakh 50 thousand rupees has been granted for the financial year 26-27.
2: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India's merchandise exports have registered a 15% growth so far in the current financial year, despite Red Sea crisis and global turmoil. He said despite these headwinds, India's merchandise exports have grown by 15% during the April-July period. Delivering the J.R.D. Tata Memorial Lecture 2026, Mr. Goyal said, the country's merchandise exports remained resilient despite mounting geopolitical tensions and disruptions to global trade routes. The minister said India's export performance reflects the strength of the country's economic fundamentals, even as businesses worldwide grapple with uncertainty stemming from conflicts in West Asia and disruptions in key shipping corridors.
6: We're growing at 7.7% last year. The world's fastest growing large economy. All of this is in the middle of two wars with so much uncertainty and geopolitical crisis around the world. We even had 50% tariffs on most of our exports to the US for a large part of the last year, despite which our exports also grew, both in goods and services, in the year ended March 26.
2: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on IX handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The annual Kamar Yatra for Shravan month will begin today. During the Kamar Yatra, a large number of people visit pilgrimage sites such as Haridwar, Gaumukh and Gangotri in Uttarakhand to fetch holy waters of Ganga River. Uttar Pradesh government has made elaborate arrangements to manage a large number of pilgrims. More from our correspondents.
7: In Lucknow, DCP Traffic Ravina Tyagi said that traffic diversions have been put in place on several routes in the state capital for 1 month in view of the Kanwar Yatra. Keeping the convenience of passengers in mind during the Kanwar Yatra, NCRTC has decided to increase the frequency of Namo Bharat train services in the national capital region. For devotees travelling to Devghar, the railway administration

हमारे देश में स्वाधीनता का सूर्योदय किसी एक दिन का चमत्कार नहीं था, वो असंख्य देशभक्तों के स्वयं जलकर प्रकाश बनने के त्याग का परिणाम था। उस पावन प्रभात की पहली किरण में अनगिनत क्रांति वीरों के रक्त की आभा थी, स्वतंत्रता की हर सांस में उनके बलिदान की सुगंध थी और मुक्त गगन में लहराते तिरंगे की हर लहर में उनके राष्ट्र प्रेम का स्पंदन था। कितने ही ऐसे सपूत हुए जिन्होंने अपने सपनों को मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। किसी ने यौवन की मुस्कान त्याग दी, किसी ने परिवार का स्नेह, किसी ने सुख सुविधाओं का संसार, तो किसी ने अपने प्राणों का अमूल्य उपहार। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित करने नहीं निकले थे। उनका तो एकमात्र स्वप्न था कि भारत स्वाधीन हो, भारत आत्मगौरव से आलोकित हो। एक ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे मणिलाल मूलाशंकर पंड्या। एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने मौन समर्पण के साथ स्वाधीनता यज्ञ में अपनी आहुति दी और अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। मणिलाल पंड्या का जन्म 20 जुलाई सन 1911 को गुजरात के पाटन नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम मूलाशंकर पंड्या था। ये 20वीं सदी का उदय काल था। गुजरात का ऐतिहासिक नगर पाटन उस समय गायकवाड़ राजवंश की छत्रछाया में अपनी सांस्कृतिक चेतना को संजोए हुए था। इसी नगर के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में उनकी परवरिश हुई। पिता ने उन्हें धर्म, मर्यादा और विद्या के संस्कार दिए। पराधीन भारत की दशा से उस समय के युवा अत्यंत आक्रोशित थे। बड़ौदा रियासत की प्रगतिशील शिक्षा नीतियों और महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण ने पाटन के युवाओं में एक मूक चेतना भर दी थी। मणिलाल पंड्या ने जब होश संभाला तब उनके कानों में तिलक जी के स्वराज की हुंकार गूंज रही थी, गांधी जी के आंदोलनों का आमंत्रण गूंज रहा था और उनके भीतर एक संकल्प जाग चुका था कि उनका जीवन देश हित में समर्पित होने के लिए है।

मणिलाल पंड्या ने देश की पुकार पर अपने मित्रों के बीच स्वदेशी का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया था। वो स्वदेशी और स्वराज का मंत्र लिए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ किया। 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से ये सत्याग्रह आरंभ हुआ। गांधी जी ने दांडी के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा आरंभ की, जो 24 दिनों तक चली और 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी समुद्र तट पर नमक कानून भंग के साथ संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक दांडी मार्च का प्रभाव पूरे भारत में हुआ और गुजरात तो इसके केंद्र में ही था, इसलिए गुजरात की धमनियों में राष्ट्रवाद का रक्त उबल रहा था। दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने मई सन 1930 में ब्रिटिश नमक कर के विरुद्ध धरसाना सत्याग्रह की योजना बनाई। ये स्वाधीनता संग्राम का महत्वपूर्ण अहिंसक विरोध था। दरअसल गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद 21 मई सन 1930 को सरोजनी नायडू और इमाम साहब के नेतृत्व में 2500 सत्याग्रहियों ने धरसाना नामक डिपो की ओर शांतिपूर्ण मार्च किया। ये धरसाना नमक कारखाने पर शांतिपूर्ण छापे की योजना थी। ब्रिटिश दमन चक्र चला। जब इन सत्याग्रहियों पर बर्बर लाठियां बरस रही थीं, तब गुजरात के स्वयं सेवकों के जत्थे में मणिलाल मूला शंकर पंड्या अग्रिम पंक्ति में सीना ताने खड़े थे। पुलिस की लाठी बरसती जा रही थी और महात्मा गांधी की जय का नारा बुलंद होता जा रहा था। सैकड़ों लोग घायल हुए। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपनी रिपोर्ट के जरिए इस घटना को दुनिया के सामने उजागर किया और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की वैश्विक चर्चा के साथ ही ब्रिटिश शासन की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। धरसाना सत्याग्रह ने मणिलाल पंड्या को ब्रिटिश शासन की नजरों में ला दिया। उन्होंने पाटन के स्थानीय बाजारों में घूम घूम कर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इसके साथ ही शराब की दुकानों के सामने धरनों का कुशल नेतृत्व किया। अंग्रेजी हुकूमत उनकी गतिविधियों से बौखला उठी। उन्होंने मणिलाल पंड्या को गिरफ्तार कर साबरमती सेंट्रल जेल में डाल दिया। एक अहिंसक योद्धा जेल के लोहे की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जेल में उसे अनेक यातनाएं दी गईं, लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत कर दिया।

जेल से रिहा होने के बाद मणिलाल पंड्या का संकल्प और भी फौलादी हो चुका था। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में स्वाधीनता आंदोलन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था, जहां एक ओर ब्रिटिश भारत था, वहीं दूसरी ओर देसी रियासतें थीं। पाटन बड़ौदा रियासत का अंग था, जहां उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर बड़ौदा राज्य प्रजामंडल तीव्र गति से सक्रिय हो रहा था। मणिलाल पंड्या जानते थे कि किसी भी बड़ी क्रांति के लिए संगठनात्मक मजबूती आवश्यक है। उन्होंने पाटन तथा मेहसाणा के सुदूर ग्रामीण अंचलों का व्यापक दौरा किया। उन्होंने शोषित किसानों से संवाद किया, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग किया और रियासती करों के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य में उनके सहयोगी थे कर्मठ स्वाधीनता सेनानी माणिकलाल मगनलाल शर्मा। दोनों ने मिलकर स्थानीय युवाओं का एक ऐसा अभेद्य नेटवर्क तैयार किया जो खादी, छुआछूत उन्मूलन और राष्ट्रीय शिक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने लगा। सन 1942 में बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया। ब्रिटिश हुकूमत ने शीर्ष नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन दिशाहीन न हो जाए, इस चिंता से अनेक नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को हवा दी। पाटन में इस आंदोलन की कमान संभाली मणिलाल पंड्या जैसे नायकों ने। भूमिगत रहते हुए उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। इस तरह पाटन और मेहसाणा का संपूर्ण क्षेत्र रातों रात गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। मणिलाल पंड्या ने देशभक्ति पत्रिकाओं और बुलेटिनों के संपादन तथा वितरण का कार्य अत्यंत सतर्कता के साथ गुप्त रूप से किया। अंग्रेजी व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए उन्होंने सरकारी डाक, टेलीग्राफ लाइन और रेलवे पटरियों को बाधित करने वाले कई गुप्त अभियानों का कुशलतापूर्वक संचालन किया। जब अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत रहते हुए संचालन कर रहे थे, तब उत्तर गुजरात तक उनके संदेशों और रसद को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने का काम मणिलाल पंड्या ही कर रहे थे। मुखबिरों की सूचना पर ब्रिटिश खुफिया विभाग ने उन्हें भारी मात्रा में प्रतिबंधित साहित्य के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस बार उन्हें अत्यंत कठोर कारावास में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उनका आत्मबल अजेय रहा। देश में आजादी की सुबह आने तक वो सलाखों के पीछे ही रहे। अंततः देश आजाद हुआ। उनकी आंखों में संतोष और खुशी के आंसू थे। उन्हें सत्ता या पद का कोई लालच नहीं था। वो एक मूक कर्मयोगी की तरह अपनी जड़ों की ओर लौट आए। वो जीवन के अंतिम क्षणों तक खादी भंडारों के माध्यम से स्वावलंबन का मंत्र देते रहे तथा निर्धन बच्चों की शिक्षा हेतु तन मन धन से समर्पित रहे। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, ये आकाशवाणी का भोपाल।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय
4: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला की आवाजें। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: यह वजी रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला की थी। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सु आयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

शांतनु मोहित्रा के संगीत निर्देशन में स्वानंद किरकिरे की रचना, आवाजें मोहित चौहान और मधुश्री की, फिल्म का नाम वेलकम टू सज्जनपुर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

मीत ब्रदर्स अनजान और अरिजीत सिंह की आवाजें थी। फिल्म का नाम था एक पहेली लीला। इस गीत को कुमार ने लिखा और धुन बनाई मीत ब्रदर्स अनजान ने।

0: गीता लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना, आवाजें अरिजीत सिंह, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी की थी। गीत को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा था और धुन प्रीतम ने बनाई थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

रेखा भारद्वाज, विशाल ददलानी और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य थे और संगीत दिया था प्रीतम ने। इस गाने के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए थे।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस गायक की जो कभी अपनी नर्मो नाजुक आवाज से आपको लुभाते हैं।
1: तुझे तक तक तक तकते रहना, तेरी बक बक बक सुनते रहना।

आज है सुरीले गायक सोनू निगम का जन्मदिन। आइए आज के फनकार कार्यक्रम में बातें करें जाने माने गायक सोनू निगम की।

हीरो से हीरो तक सफर तय करने वाले सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता की उंगली थाम सोनू ने 3 साल की नन्ही अवस्था से ही गायन का सफर शुरू कर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में ही सोनू निगम ने अपने करियर के आकाश में रंग भरने शुरू किए। दिल्ली की बर्थडे पार्टियों और विवाह समारोहों में गाना गाने से लेकर हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायन तक सफर तय करना सोनू निगम के लिए काफी जटिल और संघर्षमय रहा, लेकिन उनके आत्मविश्वास, लगन और उनकी प्रतिभा ने कामयाबी का बुलंद सितारा बनाया।

सोनू निगम के बचपन के दिन काफी संघर्ष में रहे। उन्होंने 12वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ा और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की तालीम ली। दिल्ली के बाद सोनू निगम मुंबई आए और शुरू हुई उनकी जद्दोजहद। शुरुआत में उन्हें कई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्होंने कई म्यूजिकल शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में जब उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया

अपने करियर की शुरुआत में सोनू निगम मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाया करते थे। धीरे धीरे वे मोहम्मद रफी की आवाज बन गए थे। टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बम के लिए सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गीत गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। बतौर पार्श्व गायक सोनू ने अपना पहला गीत गाया फिल्म आजा मेरी जान के लिए। उन्हीं दिनों वे रेडियो के लिए विज्ञापन बनाने लगे। साथ ही 1995 में एक टेलीविजन चैनल के लिए मशहूर कार्यक्रम सारे गामा का संचालन भी शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये कार्यक्रम कामयाबी के परचम लहराने लगा। इसके बाद सोनू निगम को फिल्म बेवफा सनम के लिए गाने का मौका मिला। गाना था

सोनू निगम की सफलता का सितारा जिस फिल्म से चमका वो फिल्म थी बॉर्डर। अनु मलिक के संगीत से सजी इस फिल्म का सोनू निगम का गाया गीत हिट हुआ और लोगों के होठों पर सज गया।

सन 1999 में सोनू निगम का नॉन फिल्मी गीतों का एल्बम दीवाना रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जलवा दिखाया। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार दीवाना एल्बम के गीतों से आज भी करते हैं।

नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म परदेस का सोनू निगम का ये गाना खूब मकबूल हुआ। ये दिल दीवाना गाने ने लोगों को दीवाना बना दिया।

इसके बाद मोहम्मद रफी की परछाई कहलाने का फैसला सोनू निगम ने बदल दिया और अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी हर कोशिश कामयाब रही। उनके गायन का उच्च शिखर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया।

सोनू निगम ने कई भाषाओं में गाने गाए, मसलन कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम वगैरह वगैरह। कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा। चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला, आंसुओं से सराबोर करता ये गीत सुनिए।

मजबूरियों से हारो मत, उनका डटकर मुकाबला करो। इस फलसफे के साथ सोनू निगम ने करियर के कई आयाम तय किए। शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने, ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी

दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालें। फिल्म कल हो ना हो इस गाने के लिए सोनू निगम को मिला सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

इसके अलावा सोनू निगम को देश विदेश के अनगिनत पुरस्कार मिलते रहते हैं। लंबी फेहरिस्त है उन्हें मिले पुरस्कारों की। आइए सोनू निगम के कुछ मशहूर गीतों पर नजर डालें। ये फिल्म है रिफ्यू।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: कमल खस का वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख कमल खस, वाचन स्वर दीपा सिंह। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात विकास कार्यों की। जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने नरसिंहगढ़ में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से बने नए सांदीपनी विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं वाले इस स्कूल में एलकेजी से 12वीं तक करीब 1300 विद्यार्थी पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल में प्रयोगशाला, संगीत, नृत्य सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने राजगढ़ जिले में विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तय समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने सिंचाई परियोजनाओं और सड़क निर्माण की प्रगति भी जानी। उन्होंने मोहनपुरा बांध से क्षेत्र में हुए बदलावों का वैज्ञानिक अध्ययन कराने को भी कहा। इसके अलावा राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने पार्वती नदी पर बन रहे बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बांध बनना उनका पुराना सपना था, जो अब पूरा हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पूरी होने पर 174 गांवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। बांध का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। शेष निर्माण कार्य वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बांध जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के जिले में इस अभियान के तहत कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक कार्यक्रम में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने लोगों से खुद नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मां बिजासन धाम की पहाड़ी पर पौधरोपण किया गया। सांसद रोडमल नागर और कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बरगद, पीपल और नीम सहित कई पौधे लगाए। जिले में कई दिनों के बाद मानसून ने जोरदार वापसी की है। अच्छी बारिश होने से खरीफ फसलों को फायदा मिल रहा है। हालांकि कई शहरी इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। गर्मी और अलनीनो के संभावित असर को देखते हुए जिले में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भूजल स्तर बढ़ाने और पेयजल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जल स्रोतों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज के लिए भी कार्ययोजना बनाई गई है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की पहल संवाद से समाधान लोगों की पसंद बन रही है। हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में लोग अपनी समस्याएं सीधे कलेक्टर के सामने रख रहे हैं। अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। जिला अस्पताल में आधुनिक आकस्मिक चिकित्सा विभाग शुरू हो गया है। अब जांच, इलाज, भर्ती और जरूरत पड़ने पर रेफरल की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। इससे गंभीर मरीजों को बिना देरी बेहतर इलाज मिल सकेगा। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इससे आपातकालीन सेवाएं पहले से अधिक प्रभावी होंगी। जिला शिक्षा विभाग ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले 9 प्राथमिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। ये कार्रवाई शिकायतों की जांच के बाद की गई। प्रशासन ने साफ किया है कि शासकीय सेवा में नियमों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों की जांच जारी रहेगी। राजगढ़ जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 5 युवकों की जान चली गई। शाजापुर से खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रही कार खुजनेर के पास तालाब में गिर गई। ग्रामीणों ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन सभी 5 लोगों की मौत हो गई। राजगढ़ होमगार्ड लाइन में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोगों को आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और राहत बचाव कार्यों का व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया। राजगढ़ जिले की 14 ग्राम पंचायतों में स्मार्टपुर परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत स्थापित स्मार्टपुर केंद्रों पर ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर प्रशिक्षण, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, बैंकिंग और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अंत में कुछ धार्मिक समाचार। जिले भर में देवशयनी एकादशी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु करीब 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ चतुर्मास की शुरुआत भी हो गई है। वहीं ब्यावरा में पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। स्कॉन के तत्वावधान में आयोजित यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे शहर में भजन कीर्तन और जय घोष से भक्तिमय माहौल रहा। रथ यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन है आपका आज के कार्यक्रम में।
1: गीत सागर
0: स्वीकार कीजिए आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका का सुप्रेम नमस्कार।
2: संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी जिंदगी में। इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे जिंदगी।
3: क्या बात है गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहां पर भी।
4: बहुत बहुत। और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहाँ पे गाँव में पला बड़ा हूँ वहाँ पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में।
3: हाँ,
4: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे। मेरे बाबू जी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच पे रख देते थे। वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं। मैं भी उनके पंखे हांकते रहता था और सुनता रहता था।
3: वाह वाह,
4: वो दौर लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब अब वापस नहीं आया।
2: हाँ, सच सच बात, सच
4: बहुत मजा आता
3: तब
4: था।
3: जिंदगी में एक सादगी थी और सब लोगों का साथ था।
4: सच में, सच में।
2: और बहुत खुशी थी।
4: हाँ, बहुत खुशी।
2: अभी बाकी की सारी चीजें बहुत सारी जिंदगी में आशाएं बहुत सारी हैं।
3: हाँ,
2: लेकिन वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकेंगे।
3: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
2: अभी हमारी चॉइस की बात है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद है। ये ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा अच्छा कोई अपनी पसंद का गाना सुना
3: दे,
2: कौन सा मेरे को कौन सा पसंद है।
3: बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं रोशन।
2: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं।
3: और एक बहुत प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने।
2: हाँ, क्या बात है। आप क्या फ्लूट उसमें बजाइए,
3: क्या बात है।

0: ये एस एन त्रिपाठी का संगीत है और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा वो फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।
0: मेरी वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है। तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए,
1: इन कदमों पे
2: किस का जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।
0: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है,
2: हाँ
0: है ना। आपको याद था?
1: नहीं।
0: क्या प्यारा गाना याद दिलाया, वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे हैं?
1: चंदन साबधन ने
0: आप गाओ
1: चंदन।

0: क्या बात, क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहाँ तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
1: गोदान राजकुमार।
0: हाँ, और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है।
1: वाह, सही बात, सही
0: जो भोजपुरी शैली का गाना है।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना। जैसे मुझे कहते हैं कल्लू कबाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया है। मैं हूँ ठुमरी तू है ख्याल, मतलब ये कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र किशन क्या लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
1: मुझे कहते हैं, मुझे

0: रहेगा।
1: क्या बात है, मुकेश को याद करते हुए ये जो शुरुआत में हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता, एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है, दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में बाकायदा आते हैं। लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है। मजरू साहब का ये गाना,
2: तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे।

0: गोविंद ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारे लाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं।
0: अच्छा,
1: थ्रू ही मैं गया था उनके साथ, हार्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आठ के आठ शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से 2 घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज़ को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस्ट बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल, गोविंद भाई ने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी, जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
0: जी।
2: और आजकल के सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज़्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है, उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
0: जी। और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
2: ठहराव
0: ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं
2: है।
0: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूं और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
2: अच्छा,
0: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
2: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तन्हाई में यहाँ लौट गया जा। मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
0: हाँ, ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
2: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सीधा,
0: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
1: मैं सीरियस जाता हूँ। एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना, भाई मैं भी सोच रहा था
0: तब तक ये सोच,
1: उनको ये गाना है
0: ये, लेकिन मजेदार होगा, लग जा गले मुकेश की आवाज में।
2: लग

0: ओ शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से
1: क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है इसको मुकेश जी की आवाज में सुनना।

0: बात है, क्या बात है, देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना।
1: देखिए लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात है, सकते वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है, बेटा जो है वो नए गाने।
1: मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है।
0: हाँ।
1: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सबको सुनती है।
0: तो आपको जबरदस्ती
1: और एकदम रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना।
0: हाँ, हाँ।
1: वो नहीं सुनती, वो इसलिए शोज में भी नहीं आती, बोलती तुम भाई तो गाओगे कुछ नया तो गाओगे नहीं। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो। अच्छा। अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
0: अच्छा।
1: सुनो सुनो सुनो
0: बिठा के
1: सुनना पड़ता। हाँ, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है।
0: ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून जो बनी हुई ट्यून है उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं। हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये भी बिल्कुल परफेक्ट बने हुए, अगर इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
0: लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेस हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया, कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: एग्जैक्टली,
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: ये मैं समझता हूँ कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम उन लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूँ तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं, शो ख़त्म हो गया पूरा ये पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहाँ के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम तो अब उसमें वो लोगों को डांस करना है तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस करने।
0: क्या मजेदार बात है, मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिन आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए, ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
2: तो शायद ये नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो कि भाई थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय।
0: गोविंद आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई

0: शक्ल देने के बारे में?
1: मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो गाने बने हैं वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आप, आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करूँ तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर, कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10 12 15 साल के, जो जनरेशन आजकल जो चल रही है, वो पुराने गानों के ही ट्यून सीख रहे हैं
0: बिल्कुल,
1: और वो गा भी रहे हैं। मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए, ये सब गाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई,
0: आज इतने बरस बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं, जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है, और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
2: बिल्कुल, और शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं, और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं,
2: यस,
0: ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
2: एग्जैक्टली, सही बात है।
0: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
2: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, ये गाना हुआ, या दोस्त ना रहा, या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो ख़त्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए। क्योंकि ये गानों का फील इतना ज़बरदस्त है,
0: बिल्कुल,
2: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है, तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो,
0: जी जी,
2: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
0: बिल्कुल।
2: तो जाने कहाँ गए वो दिन, जान

0: क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा इस गाने को सुनकर। गोविंद, आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे?
1: मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: हर कदम पर नजर ठोकरे खा रही, हर कदम पर नजर जाऊं कहां बताए दिल।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल।
1: क्या बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबावों में हमें थामते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
2: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर
1: जी
2: मुकेश जी नहीं होते तो,
1: जी
2: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज़्यादा है,
1: आम जनता की बहुत चहेते
2: बहुत
1: गायक है।
2: चहीते गायक थे। यस यस
1: गोविंद आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल ये बात तो सही है मुख्तार भाई से, मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं और मैंने
1: हाँ
0: बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जितने हुए डुएट्स सब ज़्यादा हिट्स उनके पास ही हैं, और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो, गुजरात में तो हर घर में हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो
0: बच्चा
1: गुजरात
0: दामाद
1: के, है ना?
2: दामाद थे
1: उनकी जो
2: बच्चे।
1: पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है ना, उनसे उनकी शादी हुई थी। और
2: यस
1: ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी।
2: यस
1: उन्होंने घर
2: यस
1: वालों की मर्जी के खिलाफ ये शादी की थी सरल वेन के
2: हाँ
1: साथ।
2: जी जी जी जी
0: और देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे,
1: गुजराती गाने भी गाए
0: गुजराती गाने भी
2: और
0: बहुत
2: आज
0: सारे गाए।
2: इनफेक्ट जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन।
1: हाँ
0: दिन
1: बिल्कुल,
0: क्या
1: ये भी बहुत दिलचस्प बात है।
2: और शायद पर्पजली उन्होंने उसी दिन किया होगा।
1: हाँ मेरा ख्याल शायद कितनी
2: 46 में।
1: हाँ और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
2: 23 साल हाँ।
1: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने?
2: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के
1: तो फिर हम
2: गुजराती।
1: कुछ सुनना चाहेंगे आपसे क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो गाएंगे।
2: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे, नजर ना

0: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में। बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है ना, वहां शोज भी उन्होंने काफी सारे किए। कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कॉम्पिटिशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान गायकों की अपनी अपनी जगह है। अब कौन सा गाना सुनाने वाले गोविंद आप?
1: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता हूँ।
0: अरे बाबा क्या बात है, जरूर।

0: आँखों चार करीने बीमार करीने मारा भोरा दिलो।
1: वाह वाह वाह, एक बिल्कुल अलग रंग आ गया। गुजराती गाने हमने सुने। ये जो आखिरी दौर था मुकेश जी की गायकी का, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के गाने गाए, चाहे वो धर्मात्मा हो, धर्म कर्म हो, कभी कभी हो
2: जी।
1: ये बाद के दौर के जो गाने हैं उनके, उनमें से कुछ गानों को याद कीजिए।
2: जैसे मुक्ति।
1: हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: आर डी बर्मन जी,
1: आर डी बर्मन के साथ बहुत कम गाने हैं ना।
2: हाँ, 16 गाने हैं।
1: हाँ, एक फिर कब मिलोगी भी है।
2: हाँ, लेकिन आमतौर से लोगों को जो पता है वैसे 5 ही गाने हैं।
1: अच्छा,
2: जो 16 गाने कुल गाए उनके साथ वैसे उन्होंने।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: लेकिन
1: मुक्ति, सुहानी चांदनी रातें।
3: हाँ,

0: क्या बात है, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और जी। क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है,
1: गैप आ गया, हाँ।
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में,
1: साथी
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्ने जाना है,
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधरा आईना हूँ मैं तेरा,

क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ वो जरूरी है बताना कि मजरू साहब अंदाज में लिखते हैं नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है। कई दशक के बाद साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं, मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केरसी लॉर्ड जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट इन गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है, और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, शोर।

0: वाह, जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो,
1: आना जाना मुश्किल हो जाए
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ, ऐसा कई मरतब ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना या कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम है तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है, एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा। तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकंफर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चेंज किया।
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब है, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए।
0: अरे बाप रे बाप,
2: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है, है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
2: आप कितने भी टेंशन रहे, बैक स्टेज आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होके जाना है।
0: बिल्कुल,
2: ये बहुत जरूरी लोग सुनने के लिए आए हैं तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत मर्तबा होता है।
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं?
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते, कह रहे यार दो लाइन गा ही दो।
0: मतलब मूड है कि नहीं
1: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं तो शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद, हाँ, देखने हाँ, के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे,
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ। गोविंद, आपके साथ भी होता है?
2: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ से कुछ कपड़े लेने के लिए हाँ। तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
0: अच्छा,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे। मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो? हाँ। अरे वाह, मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसा वैसा, एक सेल्फी ले लें फोटो, ठीक है कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहटों पे गा दीजिए।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
2: यहाँ पे कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाओ, फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
0: देखिए ये होता है, फैंस
2: किसी को नाराज नहीं कर सकते,
0: जो संगीत के दीवाने उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आज के इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर, ख़ासतौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफ़ी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूँ कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज़ हैं, अगर ये पुराने गाने आपने ढाई तीन घंटे सुन लिए तो अगले एक साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
0: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बहुत लोगों के मुँह से सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूज़िक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो ढाई तीन घंटे का, चार घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये तीन चार घंटे मम उस एरा में चले जाते हैं, वे एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम ख़त्म हो जाती है। वो तीन घंटे का रिलैक्स हमको अगले एक हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली।
0: अच्छा, ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमाना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस खत्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
1: हाँ, कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में डेफिनेटली, ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या ज़बरदस्ती, या शायद वो चीज़ को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में और उसको अगर वो जगह पर ला कर बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहाँ से मैं अपना ख़त्म करके जाएँ, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली इन्जॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज़ के साथ है, अगर वो दिल से इसको इन्जॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफ़ेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पर होगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद, आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए, लोग किस तरह का न्यूसेंस करते हैं?
2: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा, वो भी दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देखते हैं।
0: सबसे पहले तो अपना मोबाइल म्यूट रखना
1: चाहिए, डेफिनेटली
2: वो तो जरूरी है।
1: और अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको इसको पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए,
0: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना।
1: एग्जैक्टली,
0: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत की लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।
1: जहां तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारा ये पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, लेकिन अब पर्टिकुलरली जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ है, जिस गली में तेरा घर ना हो, बालमा हुआ,

0: अब मैं आपको ऐसे फंसाने वाला हूँ जैसा किसी ने नहीं फंसाया होगा।
1: ऑलरेडी आप कर चुके हो वैसे।
2: कब से सोच रहा हूँ मैं।
0: अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंताक्षरी खेलें। आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
1: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना।
0: हाँ।

0: रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: राव पर लाकर छोड़ा है इन्होंने।
0: रास्ते का पत्थर किस्मत।

0: क्या प्यारी बात है। इसी स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं, योगेश जी आए थे और उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे सुनाई थी। बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है। और देखिए, मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है, ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी अंताक्षरी भी खेले अपने घरों की महफिलों में, अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे?
1: जीना है मरना है कल के।

0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए, ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई आपका भी, विविध भारती का भी, और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत मजा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा और गाया जाएगा।
0: बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: ये था पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष कार्यक्रम। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनी। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे गायक मुख्तार शाह और उनके साथ गोविंद मिश्र। इन दोनों से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

अशोक भोसले के स्वर में जयशंकर प्रसाद की यह रचना संगीत जयदेव का था। रंग तरंग कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है महादेवी वर्मा की रचना स्वर छाया गांगुली का।

गुलजार के बोल थे। वादा एल्बम से ये गीत था, संगीत उस्ताद अमजद अली खान साहब का था। अब भूपिंदर की आवाज गूंज रही है गुलजार के बोल।

0: एल्बम का नाम था मैं और मेरा साया, डॉक्टर भूपेन हजारिका की आवाज थी। विविध भारती, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
0: और अब जाने माने गायक सोनू निगम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पेश कर रहे हैं ये गाना।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार

0: और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुसंधान रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
1: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात के मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुनिए यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज सोनू निगम को हम दे रहे हैं जन्मदिन की बधाइयां। तो कुछ ऐसे गाने जो सोनू निगम के बड़े सुहाने से गाने हैं जो हमारे सफर को बनाएंगे सुनहरा।

0: दिल से फिल्म का ये गीत आपने सुना, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बॉर्डर फिल्म का ये गीत जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक की तर्ज थी, रूप कुमार राठौड़, सोनू निगम और साथियों की आवाजें थीं। आज है सोनू निगम का जन्मदिन और विविध भारती पर यादों की महफिल कार्यक्रम में उनके गाने हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
2: फोक कहते हैं आमद को, हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सुं आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जी पधारिया।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
0: परदेश फिल्म का गाना सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन। आनंद बख्शी, नदीम श्रवण।

परदेश की बात अब थ्री इडियट्स फिल्म का गाना सुनो निगम शान और स्वानंद किरकिरे। गीत स्वानंद किरकिरे, संगीत शांतनु मोहित्रा। दिन के 12:39 और विविध भारती

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
5: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आए हाय
0: सुनो निगम और अनुराधा पौडवाल, फिल्म का नाम है तुम बिन,

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल जाता है फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुनिए सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की आज की इबारत हमने विविध भारती के सोशल मीडिया पेज पर यानी फेसबुक पर पोस्ट कर दी है और आप सभी ने पढ़ भी ली है। ये इबारत है, कुछ दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होते, वो राह भी दिखाते हैं। उस दिन राह दिखाने वाले एक दोस्त ने कहा था, उतना ही उपकार समझ तू जितना साथ निभा दे। बात इशारों वाली थी पर फौरन समझ में आ गई थी। कुछ बहारें बीती और इस एहसास को जीना भी पड़ गया। एक सुरमी शाम थी, उस दिन वो आखिरी बार मिली। वो जगह गई कि दुनिया परछाइयों की है, भरी भीड़ में खाली तन्हाइयों की है। तब से आंखें नहीं रह गईं, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी बन गई। प्यार करने वाले तो बद्दुआ भी नहीं दे सकते, जैसे बख्शी साहब ने लिखा था, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। जिस दिल में बसा होता है प्यार वो यही कहता है, चांद धुंधला सही ये गम नहीं है मुझे, तेरी रातों पे रातों का साया ना हो। शाम की तन्हाइयां अक्सर उसकी याद दिलाती हैं और तब होता है एहसास, मैं शायद एक ख्वाब था जिसे उसने अपनाया ही नहीं। एक छोटी सी कहानी हमने पोस्ट की आज की इबारत के तौर पर। इस कहानी से आपको ये समझ में आता है कि दो लोगों का साथ निभ नहीं पाया। एक के हिस्से में उदासी आई, शायद दूसरे के हिस्से में भी आई ही होगी। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि आज की इबारत बता देती है कि गाने कौन से शामिल होने वाले हैं बाकायदा। दरअसल गानों की पंक्तियां इस कहानी की पंक्तियां जो बन गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर इस गाने के साथ। क्या तो शानदार ओपनिंग म्यूजिक है इस गाने का, जो मेरी आवाज के पीछे आपको सुनाई दे रहा है। किस फिल्म का है गाना ये तो जरूर बताइएगा, लेकिन साथ में ये भी बताइए दो बातें। एक तो ये कि किस जगह की शाम आपको बहुत ज्यादा पसंद है। लोग शामें अवध और सुबह बनारस की बात करते हैं, आपके लिए किस जगह की शाम मायने रखती है। और दूसरी बात, क्या जिंदगी में आपके साथ भी ऐसा हुआ कि किसी एक मोड़ पर किसी का साथ छूट गया और रह गई केवल उदासी।

और जब शाम की बात चली तो बहुत सारे श्रोताओं की बातें आई हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो हर शाम दिल लुभाने वाली होती है, लेकिन पुरी की जो शाम है, पुरी के समुद्र तट की शाम, सूर्यास्त का नारंगी रंग बहुत ही मन मोह लेता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे हमारे शहर उज्जैन की शाम पसंद है, क्योंकि 36 साल की सेवा के बाद मुझे अपने शहर वापस लौटने का मौका मिला है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि कोच्ची की शाम पसंद है, हमारी छत से हम सूर्यास्त देख सकते थे, सूरज समुद्र के नीचे जा रहा था, धीरे धीरे खूबसूरत प्रकाश फीका हो रहा था। इसके अलावा लेकिन

इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे कक्षा 8वीं की शाम बहुत अच्छी लगती थी जब मैं एनसीसी के कैंप में भोपाल गया था और कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे। इसके अलावा एक श्रोता की बात यह है कि उन्हें सुबह और शाम दोनों ही अपने शहर की अच्छी लगती हैं, यानी उनके शहर की ही सुबह और उनके शहर की ही शाम उन्हें अच्छी लगती है, घर पर अच्छा लगता है। एक श्रोता और है जिनका कहना है कि समंदर के किनारे जो शाम बीते डूबता सूरज क्षितिज को सुनहरा करता है वो देखना बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो हर शाम मुझे अधूरी सी लगती है। और इसके अलावा लखनऊ की शाम भूलने वाली नहीं है, ये बात भी एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं की बातों के बीच में एक बात ये भी है कि एक श्रोता अपने दफ्तर से कार्यक्रम सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए जो कि आज की इस इबारत का हिस्सा था जिसे हमने गानों के बोलों के इशारों से सजाया था, और ये जो गाना है ये कहता है कि थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी, यानी जिंदगी की उदासी को और आंखों के भीग जाने के एहसास को ये गाना बयां करता है। पिछली बार हाल ही में किस बात पर आपकी आंखें भीग गई थी ये बात बताइएगा, और साथ में ये भी कि इस गाने में ये जो नाजुक आवाज है, दिल में उतर जाने वाली आवाज, ये किस गायिका की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि पिछली बार तब बहुत रोना आया था जब मैं भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर आर्मी की भर्ती की परीक्षा देने गया था और केवल 20 सेकंड से मैं रह गया था। एक और श्रोता है जो कहती है कि शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, जुगल हंसराज वाली फिल्म मासूम और गायिका आरती मुखर्जी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्हें आरती मुखर्जी के साथ कोलकाता में चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ था, ये उनके लिए बहुत ही यादगार लम्हा है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि कुछ लोग जो अब साथ नहीं हैं उनकी याद में आंखें नम हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि मैं जब भी फूलों का तारों का गीत सुनती हूं तो अपने भाई को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। बचपन की याद दिलाने वाली फेसबुक पोस्ट देखकर आंखें नम हो जाती हैं कि कितनी निस्वार्थ दोस्ती थी, आपस में खेलना झगड़ना फिर सुलह कर लेना। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका ये कहना है कि जिंदगी कितनी अजीब है, सब कुछ इतना मुकम्मल लगता है कि इंसान वक्त को वहीं रोक देना चाहता है, लेकिन शाम ढलती है वो इंसान विदा हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा फैर जाता है। एक और श्रोता है कहते हैं पूछिए आज हम आ गए मैदान में। बिल्कुल जी, अब तो कठिन से कठिन सवाल पूछेंगे, आइए मैदान में। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने 1983 में आई थी फिल्म मासूम ये लिखा है। एक और श्रोता का कहना है कि माँ का साथ कुछ साल पहले छूटा, दुनिया में वीरानी छा गई, एक खालीपन है। शाम की चाय अब भी पीती हूँ पर माँ के साथ शाम की चाय की बात कुछ और थी। अब घर का वो कमरा जहाँ से माँ की रौनकें थी, दर्द भरा सन्नाटा पसरा रहता है। किसी का साथ जब छूट जाता है तो कितना बदल जाता है जीवन। एक और श्रोता लिखते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा थी तो मन में ख्याल आया कि सबसे पहले गुरु तो माँ पापा होते हैं, बस सोचते सोचते आंखें भर आईं। तमाम श्रोताओं के इस तरह के कमेंट कुछ जज्बाती कर देने वाले, कुछ अपने दिल की बात कहने वाले, शुक्रिया आप सभी का। और पूरी इबारत की एक तरह से डोर पकड़ के जो अगला गाना हम आज के हार में मोती की तरह पिरो रहे हैं वो मुकेश की आवाज वाला ये गाना है। फिल्म का नाम और गीतकार का नाम बताइएगा।

एक श्रोता लिखते हैं कि शाम से शुरू हुई सुरमई संगीत की यात्रा, नैनों ने पानी बरसाया, दिल तोड़ दिया और दिल को समझ लिया, ये आपका अंदाज है, शुक्रिया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहेली फिल्म का गाना है और संगीतकार इंदिवर जी हैं। भाई संगीतकार नहीं, गीतकार इंदिवर जी हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और सहेली 1965 में आई थी, बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि उनकी लिस्ट में ये गाना शामिल था। एक श्रोता लिखते हैं कि कल रफी साहब की याद का दिन है और कम से कम 2 घंटों का कार्यक्रम होना चाहिए और आप इसे प्रस्तुत करें, बहुत शुक्रिया। रफी साहब की याद में कार्यक्रम जरूर होगा और क्यों ना आज ही से हम रफी साहब के लिए अपने दिल के जज्बात का इजहार करना इसलिए शुरू कर दें क्योंकि अभी कार्यक्रम का जो अगला गाना है वो रफी साहब की आवाज वाला ही गाना आ रहा है। एक श्रोता लिखती है कि प्यार कभी मरता नहीं, वो याद में बदल जाता है, याद से एक मूक ताकत हमें जीने को मजबूर करती है। कितना कुछ है दुनिया में भूलने को और कितना कुछ है दुनिया में याद करने को। इसके अलावा एक और श्रोता है, कहते हैं कि मेरी पत्नी ही मेरी सच्ची दोस्त है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अधूरी कहानी के नायक और नायिका के लिए आंखें सजल होती हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है लिखते हैं कि दिल नाजुक है और उसका भावुक होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। एक और श्रोता है लिखती है कि कुछ गाने बीतते नहीं है, दिल में एक टीस पैदा करते हैं और आंखें भीग जाती हैं। आरती मुखर्जी वाला गाना उन्हें कुछ इसी तरह का गाना लगता है। और अब मोहम्मद रफी की आवाज आ रही है, साहिर लुधियानवी का लिखा एक फलसफा। कल मोहम्मद रफी की याद का दिन, 31 जुलाई का वो दिन जब रफी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, क्यों ना आज से ही रफी साहब के प्रति अपनी जज्बात का इजहार करें और आज के इस कार्यक्रम में आप बताएं कि कितना प्यार करते हैं आप रफी साहब की आवाज से, कितना मायने रखते हैं रफी साहब।

एक श्रोता लिखते हैं, बचपन में किसी आवाज से आरंभ हुई तो वो मरहूम सुरों के साधक मोहम्मद रफी ही थे जो अब तक दिल में बसे हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मेरा पसंदीदा गाना है और मैं बरबस गुनगुनाता हूँ। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि चित्ररेखा फिल्म का ये गीत साहिर लुधियानवी, रोशन, प्रदीप कुमार, केदार शर्मा, क्या बात है, पूरी डिटेल्स आपने लिख ली है। राग यमन पर आधारित गाना, सितार, सरोद और बांसुरी का बेहतरीन इस्तेमाल, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रफी साहब की आवाज रूह को छू लेने वाली आवाज है। और इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर गीत है, मन रे तू काहे न धीर धरे, बचपन से सुनती आ रही हूँ, कितना सुकून है इन बोलों में। एक और श्रोता, मेरे लखनऊ के घर में जिसमें मैं खेली पढ़ी, सबके शादी ब्याह हुए, भाई बहन का प्यार सब यादें रह गईं, वो घर बेच दिया गया, भाई लोग फ्लैट में चले गए, बहुत रोना आ रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर बोल चित्रलेखा फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता का कहना है कि रफी साहब की आवाज का तिलस्म कभी खत्म नहीं हुआ, इस तिलस्म का असर और ज्यादा गाढ़ा होता चला जा रहा है। एक और

सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा है या कौन से गाने हैं जो सबसे ज्यादा पसंदीदा रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बताइए कि आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके होंठों पर सजा है।

भाई ये गाना कितनी जल्दी खत्म हो गया ऐसा लगता है। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मेरे होंठों पर एक ही गीत जहन में आ रहा है, न फनकार कोई तुझसा तेरे बाद आया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संगीत के प्रति मेरे लगाव की शुरुआत मोहम्मद रफी से हुई है। मोहम्मद रफी सिर्फ गायक नहीं बल्कि भारतीय संगीत की वो रूह है जिसने करोड़ों दिलों को धड़कना सिखाया। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि उपकार का जो गाना है, सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं और आज सुबह से बारिश का लुत्फ हम ले रहे हैं। और एक श्रोता का कहना है कि लता जी का तार सप्तक स्वर अंतरे में बहुत भाता है इस गाने में। गुलशन बाबरा का लिखा गीत, कल्याण जानन जी का संगीत, ये भी एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरे देश की धरती टाइमलेस गाना है और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना यही है। और उसके अलावा कस्मे वादे प्यार वफा, एक और श्रोता है कहते हैं कि आज से सावन शुरू हो गया है, कई दिनों से बहुत उमस वाली गर्मी थी और इस समय तेज बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक श्रोता कहती है कि किसी अपने के लिए की गई वो पवित्र दुआ है जहां खुद को पीछे छोड़कर केवल सामने वाले के जीवन में कोई उजाला और मुस्कान देखना चाहता है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि शायद इबारत देखने के बाद यही गीत पूरा हमारे जहन में चल रहा था और इस गाने का इंतजार वो कर रही थी। इंतजार एक और कार्यक्रम का कीजिएगा।

0: जिसकी सूचना आप देते हैं फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय
0: भाई, विविध भारती पर सुरीला सफर चल रहा है और हमारे श्रोता किस तरह से अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज सोनू निगम का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देना चाहते हैं। बिल्कुल दीजिए भाई, और हमने तो इससे पहले वाले यादों की महफिल वाले कार्यक्रम में बाकायदा उन्हें बधाइयां दी हैं, और फनकार आज के फनकार कार्यक्रम का जिक्र भी उन्होंने किया है। और बहुत सारे श्रोता मोहम्मद रफी साहब के बारे में अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सुबह से एक गाना जहन पर चढ़ा हुआ है, वो है स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि सुबह से हमारे जहन पर छाया हुआ है वो गाना चांद आए भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि टेलीपैथी हो गई, हर खुशी हो वहां हमारे जमान पर सुबह से चढ़ा हुआ है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये दिल दीवाना है, ये हमारे जहन पर चढ़ा हुआ है। एक श्रोता के जहन पर चढ़ा हुआ है, मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। और इस तरह से सभी अपने अपने गाने बता रहे हैं, और आज की इबारत का अगला गाना ये, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आज की शाम सुनहरी बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं।

इस गाने को सुनकर एक आह निकल जाती है, आह फिल्म का गाना जिसको सुनकर आह निकल जाती है। एक श्रोता कहते हैं कि भाई कजिन को पढ़ाना है, शाम को मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शाम का आनंद लेंगे। एक और श्रोता का कहना है कि शाम की तन्हाई को और गहरा बनाने के लिए समुन्दर का किनारा ही बढ़िया होता है। और शैलेंद्र के इस गाने पर एक श्रोता जो है बहुत भावुक हो रहे हैं। एक और श्रोता है कहते हैं कि मैंने 6 गाने आज अंदाजा लगाया था, इन 6 गानों का गैस किए थे, 6 गाने शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 गानों की लिस्ट में ये 3रा गाना है जो शामिल हुआ है। एक और श्रोता है जिनके शहर में बारिश की सूचना है, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाने वाली, और जब बारिश होती है और जब कहीं जाने को नहीं होता तो किचन में एक बहुत हल्की चीज बनती है जो तेल के ऊपर तैर जाती है। वो हल्की चीज कौन सी है भाई, जो बारिश के मौसम में हमें जरूर खाना पसंद होता है? जरा बताइएगा, वो हल्की चीजें जो हैं जीवन में बनी रहें, उनकी महक बनी रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और सुबह से ही हम सावन के गाने गुनगुना रहे हैं। एक और श्रोता है जो जबलपुर में, और कहते हैं कि आज हमारे शहर में मोहम्मद रफी साहब की याद में कार्यक्रम है और आज शाम को वो वहां जाने वाले हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैंने जैसे ही सोचा मेरी मम्मी का ये फेवरेट गाना बजने लगा और मैं साथ में गुनगुनाने लगी। आज शाम को सभी दोस्त मिल रहे हैं और तालाब में बोटिंग करने जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है और बाकायदा बोटिंग का मौसम है। देखिए भाई, कितने सारे श्रोताओं के जो शाम के प्लान्स हैं वो हमने उजागर कर दिए आज के इस कार्यक्रम के जरिए। तो बताइएगा कि आपका आज की शाम का क्या प्लान है। तब तक ये गाना जो जिंदगी दुनिया और रिश्तों की हकीकत को उजागर करता है, बताइएगा ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे आज आपकी बात नहीं।

बहुत श्रोताओं के कमेंट तना दन चले आ रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि उदासी गहरी होती है तो दोस्तों से बात करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बस उस दिन एक्टिव होता है जब किसी का जन्मदिन हो। मैंने ऐसे ही एक दिन कहा कि सब कहाँ रहते हो, तो बड़ा ही रूखा सा जवाब आया कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आप मेरे फेवरेट एंकर बन गए हैं। रफी साहब के बारे में क्या कहूं, वो मेरे फेवरेट थे, फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगे। बहुत ही सही, उन्होंने कहा कि अगर एक भी दिन रफी साहब की आवाज ना सुने तो बहुत खाली सा लगता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि जरीना वहां पर फिल्माया गया ये गाना है सितारा फिल्म का। एक और श्रोता है कहते हैं कि दोस्त होने का क्या फायदा जिससे बात ना हो। दोस्त तो वो होता है जो झगड़ा करने के बाद आकर बोले कि भाई क्या हाल चाल है, चलो बड़े तालाब में घूम कर आते हैं। क्या बात है, प्यारी बात कही है। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि सितारा फिल्म का ये गाना बहुत कम सुनाई देता है, आज आपने सुनवाया, शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज आपने वो बातें छोड़ दी हैं जो दोस्ती की अनगिनत यादें लेकर आती हैं और अंत में आंखें भिगो देती हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आपने जो बहुत ही हल्की सी चीज का जिक्र किया है वो पकौड़े हैं जो कढ़ाई में तेल के ऊपर तैर जाती है। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जिनका आज पकौड़ी खाने का प्लान है। तो जरा ये बताइए, बहुत सारी महिलाएं के भाई पकौड़ी आप ही बनाती हैं या अपने पति से भी बनवाती हैं? किन किन घरों में पति पकौड़ी बनाते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है? और अब वो गाना आ रहा है जो उदास कर देने वाला है। मुकेश की आवाज में उदास गाने आपको पसंद होते हैं या फिर रोमांटिक गाने, बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, ये भी बताइएगा।

कार्यक्रम के तकरीबन आखिरी दौर में हम आ पहुंचे हैं। हिमालय की गोद में फिल्म का ये गाना बजा। बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि कढ़ी बनने से पहले ही सारे घर वाले पकौड़े खा लेते हैं और मैं कढ़ी कैंसिल कर देती हूं। आपके घर में भी क्या ऐसा होता है? एक और श्रोता लिखते हैं, बनारस और बारिश पकौड़े का सवाल ही नहीं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुकेश की दर्द भरी आवाज उन्हें ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बरसात में पकौड़ी मैं बनाती हूँ, मेरे पति चाय भी नहीं बनाते तो पकौड़ी क्या खाक बनाएंगे। अरे रे रे रे रे, ये तो बड़ी बुरी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े कढ़ाई में तो हल्के होते हैं लेकिन खाने के बाद सेहत के लिए भारी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ चीजें तो हम अपनी श्रीमती जी से ही बनवाते हैं क्योंकि उनके हाथ की स्वादिष्ट होती है, तैयारी भले मुझे करनी पड़ती है। और इसके अलावा भाई आज तो पूरा पकौड़ी पुराण शुरू हो गया है। बहुत सारे श्रोता ये, बहुत सारी महिलाएं ये बता रही हैं कि उनके पति को पकौड़े बनाने नहीं आते। अब जरा सोचिए कि ये कितनी गलत बात है। और सीख लीजिए, आज ही के आज सीख लीजिए। आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि आज ही आप सिखाएंगी। और अगला गाना आ रहा है, फिल्म का नाम तो कश्मीर की कली है पर इस गाने के गीतकार कौन है और आप कश्मीर कब गए थे और कश्मीर जाने की सुनहरी याद क्या है बता?

शुदा लिखते हैं कि कश्मीर से याद आया कि हिमाचल प्रदेश में एक गांव का नाम कश्मीर है. अभी कुछ दिन पहले वहां गए थे. ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट कश्मीर घूमने के इरादे से गूगल मैप के जरिए हिमाचल से इस कश्मीर के गांव में पहुंच गए थे. एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि वो 2015 में कश्मीर गए थे और बहुत ही सुनहरी यादें हैं. और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि कल्पना से भरी हुई अच्छी मसालेदार पकौड़ी विविध भारती पर सुनने को मिली. और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब भी कश्मीर का ख्याल आया घर में ही कश्मीर का माहौल पाया. पत्नी के हाथों से बने चाय पकौड़े टीवी ने ही कश्मीर से रूबरू करवाया. भाई वाह क्या कहने हैं. और एक श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर में 3 साल तक रहे हैं और वहां कुछ पढ़ाई की है. युवा उम्र की यादें क्या बात है. एक और श्रोता है जो ये कहती है कि 2014 में अमरनाथ गई थी और हम वहां कश्मीर गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था. एक और श्रोता है वो कहते हैं कि भाई पकोड़े नहीं तल सकते तो क्या हुआ. प्याज आलू काटने में और छीलने में मदद तो कर सकते हैं ना. ये भी कम तो नहीं. बहुत सही बात है. और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई कश्मीर की कली बहुत शानदार आज का कार्यक्रम बहुत शानदार. और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें पकौड़े खाने से मना किया है और आप पकौड़े का नाम ले रहे हैं तो मुंह में पानी आ गया है. इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े वाली कढ़ी बनती है हमारे घर में और सभी सफा चट कर जाते हैं. एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं रोज अपने घर में काम करता हूं और महिलाओं का सहयोग करता हूं, खाना भी बनाता हूं. कोई व्यंजन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बना सकता. पकौड़ी क्या चीज है, आप पधारिए पनीर के पकौड़े बनाए जाएंगे. भाई वाह क्या बात है. इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि भाई आपकी बातों के बाद पकौड़े खाने का मेरा मन कर रहा है और वो भी भुट्टे के पकौड़े. भाई आज ना ये कार्यक्रम सुरीला सफर जो है वो गानों से ज्यादा तो पकौड़ों की बातों का सफर हो गया. एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े और पति जी नहीं वो सिर्फ जायका लेते हैं. इसके अलावा और भी श्रोताओं ने ये सब जिक्र किया है. बहुत शुक्रिया. देखिए जरा सी बात पर कितनी लंबी दास्तान हो गई और कितने सारे श्रोताओं ने कितनी सारी अपनी

देखकर संतोष कर लेते हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में इस तरह से साथ निभाने के लिए। आप बारिश का इंतजार करें और खूब पकौड़े बनाएं, मजे से खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जिंदगी की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहें, विविध भारती के संग बने रहें। सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ आपका ये दोस्त यूनुस खान था। इजाजत, नमस्ते।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म तमाशा से गीत सुनेंगे मीका सिंह और नकाश अजीज के स्वर में। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार ए आर रहमान।

मैं हूं ना। इस फिल्म से अगला गीत सुनेंगे केके और अलका याग्निक के स्वर में। गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। एक सोशल

0: धार्मिक स्थलों पर दर्शन, पार्किंग, यातायात, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक व्यवस्थाओं का विस्तार किया गया है।
1: कांवड़ यात्रियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जितना बन सके हम हर जगह प्रबंधन कर रहे हैं। खासकर ओंकारेश्वर महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं, ऐसे में उनके आने जाने के मार्ग पर भी सभी प्रकार के प्रबंधन करने के निर्देश अपनी सरकार ने जारी किए कि दर्शन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रबंधन, कुछ रास्ते में जलपान या अन्य प्रकार के प्रबंधन करने के लिए भी सरकार तालमेल कर रही है।
0: वहीं आगरमालवा के ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जा रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 50.26% मतदान दर्ज किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। इसी बीच लखनपुर गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर कुछ ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं उदगवा में फर्जी मतदान का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आज नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भोपाल में आज से इलेक्ट्रिक बसों का व्यावसायिक संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में 2 रूटों पर 10 ई बसें चलाई जाएंगी। इनमें चिरायू अस्पताल से बोर्ड ऑफिस मेट्रो स्टेशन होते हुए रेलवे कोच फैक्ट्री तक के मार्ग शामिल हैं। यात्रियों से न्यूनतम 7 रुपए तथा प्रति किलोमीटर 1.5 रुपए की दर से किराया लिया जाएगा। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के अनुसार फिलहाल 30 ई बसें शहर में पहुंच चुकी हैं और अगले चरण में अन्य रूटों पर भी इसका संचालन शुरू किया जाएगा। औपचारिक लोकार्पण 15 अगस्त को प्रस्तावित है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून के 3 मजबूत मौसम तंत्र सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने आज धार, देवास, बुरहानपुर, हरदा और नर्मदापुरम में अति भारी बारिश और उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, रायसेन, सागर, बैतूल तथा छिंदवाड़ा, फांडुना और सिवनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आगामी रविवार तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के मानस भवन में 1 से 5 अगस्त तक मंदाकिनी श्री राम किंकर के पंच दिवसीय प्रवचन आयोजित किए जाएंगे। आगरमालवा के ग्राम आवर, पालखेड़ी और चाचाखेड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों के सदस्यों से संवाद किया गया। मंडला में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के समापन पर बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देने वाले 61 शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को मंत्री संपति अविके ने सम्मानित किया और शिवपुरी जिले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने कृषकों से खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के

0: फाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी एनी ऑर्गेनाइजेशन एनी बॉडी एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एनी बिजनेस एंटिटी एनी कंपनी एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोप्राइटरशिप एनी सब एसोसिएट्स एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
4: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में एक बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
6: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
7: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
8: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी, किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
9: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
11: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
12: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज डमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के चार शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बहू बेगम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में था। साहिर लुधियानवी की बोल रोशन की तर्ज थी।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर।
3: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
2: पवन करे शोर।
3: हाँ जी यार।

दिल्ली का दादा फिल्म का ये गाना था। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें, सहर लुधियानवी के बोल इन दत्ता की तर्ज थी। इससे पहले का गीत जागते रहो फिल्म का था, सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र के बोल थे, आशा भोसले की आवाज थी।

मजनू सुल्तानपुरी के बोल थे, प्रीति सागर और भूपिंदर की आवाजों में ये भूमिका फिल्म का गाना था, संगीत वनराज भाटिया का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश जुर्माना फिल्म का ये गाना।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हाल चाल है आरती?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: और इस
2: बारिश
1: तरह
2: के दिनों में
1: बारिश का आनंद ले रही है?
2: बिल्कुल, बारिश में भीगते हुए आइए भीगते हुए जाइए यही आनंद है।
1: तो बारिश जो है बहुत खूबसूरत ऋतु है, पर उसका आनंद हमें सावधानी के साथ लेना पड़ता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि बारिश का मौसम आया कि पर्यटन का आनंद लेने के लिए हम सभी उमड़ पड़ते हैं।
2: ये तो है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि कुछ हमें परेशानी भी हो सकती है या कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि बारिश के जो दिन होते हैं ना थोड़े से खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब हम पहाड़ों पे या ऐसी जगहों पे जाते हैं ना तो थोड़े फिसलन बड़ा वो जगह रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आपके क्या अनुभव है, हमारी जो भी सखियां हैं और सखा है उनके क्या अनुभव है, वो कभी बारिश के दिनों में घूमने गए हैं तो उनकी क्या यादगार वो किस्सा है जो वो बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, वो
1: बताएं। अनुभव लिखकर भेजें तो हमें ज्यादा मजा आता है।
2: बिल्कुल।
1: कि बारिश में कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए ये तो हम सभी जानते हैं, पर अगर आप कभी घूमने गए थे और फोटो लेने कहीं बहुत दूर चले गए, लंबे चले गए, पैर फिसल गया, या फिर बहुत सावधानी के साथ आपने फोटोज ली है, जो भी अपने अनुभव है वो हमसे
2: बिल्कुल
1: साझा
2: कीजिए। आपने किस तरह से कौन कौन सी सावधानियां ली जिसके वजह से आपका सफर जो था वो बहुत सुहाना बन गया, तो आप ये सब हमें बताइए। और साथ ही हम क्या बात करने वाले?
1: मुझे कुछ कहना है इसके अंतर्गत, हम थूकने की बुरी आदत कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो इतनी गंदगी फैलाते हैं। अपने घर में हम बहुत स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, हम अपने घर में वॉश बेसिन में जाके ही थूकते हैं, लेकिन बाहर घर से बाहर निकले कि इधर उधर थूकना शुरू हो जाता है। ये बहुत गंदी आदत है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है।
2: तो फैलती ही है। साथ ही जो बाहर के पर्यटक बाहर के देशों से आते हैं या घूमने के लिए, वो जब देखते हैं कि सड़कों पे किस तरह से हम लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, तो उससे हमारे जो देश का है ना वो प्रभाव गलत पड़ता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने देश का जो अपनी प्रतिष्ठा है उसको बना के रखें।
1: जी, और ये बात आपने कही है ना आरती, तो जब हम ही लोग विदेशों में घूमने जाते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि वहां पर फाइन होता है।
2: हाँ, ये
1: तो वहां हम बहुत सावधानी के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर अपने देश में आके सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश का गौरव हमें खुद बनाए रखना है। साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम डॉक्टर बुधरी ताती के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है
2: और
1: उपयुक्त टिप्स।
2: हाँ, वो है जलने कटने पर, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना खाना बनाते समय कभी कुकर छू गया या इस तरह का तवे से हमारे हाथ जल गया या कुछ कर रहे हो से हाथ जल गया या कट गया, तो हम उस समय क्या चिकित्सा अपना सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे
1: जी। और साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। हमारे देश में अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, पर पूरे
2: अंतर्राष्ट्रीय जो
1: पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आज मनाया जाता है। तो हम अपने सभी साथियों को मित्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
2: बिल्कुल, क्योंकि आप भी हमारे मित्र ही हैं ना
1: जी,
2: सखा हैं,
1: हमारे साथी हैं, उनके नाम में ही सखा है सखी है, तो हमारे तो बहुत करीबी
2: हैं। हमारा दिवस है, समझ
1: जी, हम सभी का दिवस है
2: जी। बिल्कुल।
1: और आप क्या करें?
2: बिल्कुल, एक गीत सुनते हैं ना,
1: सुन लेते हैं गीत।

0: तो जब दोस्ती है तो वहां पर बात करना बहुत जरूरी होता है ना?
1: बिल्कुल, जब हम मिलते रहते हैं ना तो हमारी दोस्ती बनी रहती है, जब हम थोड़ा बहुत मिलना बंद भी कर देते हैं ना फिर भी हमारी दोस्ती बनी रहती है, क्योंकि हम दिल से जुड़े होते हैं।
0: हाँ
1: कुछ रिश्ते होते हैं जो हम ऊपर से अपने साथ लेकर आते हैं, किस जिस घर में हम पैदा होते हैं
0: जी
1: वो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन एक रिश्ता जो होता है ना वो हम खुद बनाते हैं।
0: वो है दोस्ती का रिश्ता।
1: बिल्कुल, दोस्ती का रिश्ता है।
0: और हमारे बीच में और श्रोताओं के बीच में, सखियों के बीच में ये प्यार से रिश्ते की डोर बंधी हुई है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से की थी और इस दिवस का उद्देश्य लोगों, समाज और देश के बीच मित्रता, विश्वास और सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल, और मित्रता केवल साथ में घूमने फिरने या हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती है, ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतियों पर रोक लगाने, सही मार्ग दिखाने और सफलता पर दिल से खुश होने का नाम है। सच्चा मित्र हमारी कमियों को तो छुपाता नहीं बल्कि उन्हें दूर करने का हमें साहस देता है। वो हमारे मुंह पे बताएगा कि ये कमी है, अगर कोई हमें बताएगा नहीं हमारे अंदर क्या कमी है तो हम उसे दूर कैसे करेंगे। तो वो सच्चा मित्र जो होता है ना वो

0: प्यार से अपनाया है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हिंदी में इसे मित्रता या मैत्री भी कहा जाता है। इस शब्द में एक ठहराव है, ये रिश्ता खून के रिश्तों से अलग होता है क्योंकि इसे हम खुद चुनते हैं। स्वतंत्रता दोस्ती में उम्र, जाति, धर्म या हैसियत की कोई सीमा नहीं होती, ये पूरी तरह स्वतंत्र और शुद्ध भावना है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो कहती हैं कि दोस्त वही जो हर हाल में साथ निभाए, बिना कहे दिल की हर बात समझ जाए। और एक और हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाए जाने की शुरुआत साल 1958 में हुई थी, और पैराग्वे के डॉक्टर थे रेमोन ऑर्टेमियो ब्राचो ने एक अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य देशों और समाजों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करना था। बाद में इस विचार को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित कर दिया।
0: एक साथ ही लिखते हैं, सच्चा मित्र वह है जो हमारी मुस्कान के पीछे दर्द को भी पढ़ ले, बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़ा रहे। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की खुशबू कभी नहीं बदलती। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, साथ बिताए अनगिनत पल, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए, यदि दिलों में अपनापन हो तो दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: क्या
1: और
0: बात
1: हमारे
0: है।
1: एक साथी कहते हैं, सोनाली, जब जिंदगी में बहुत बुरा हो जाए, कुछ ना रहे, और उस समय दोस्त का हाथ गलबहिया कंधे पर टिके और दोस्त ये कहे, कुछ भी नहीं हुआ, बस तू ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना, सच में बहुत ज्यादा इससे हमें
0: संबल मिलता है
1: बिल्कुल, तो
0: कि
1: हमें लगता है कि कोई है साथ में।
0: कोई है कि अरे मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करता
1: बस
0: है
1: ये
0: या
1: कि मैं
0: चिंता
1: हूं ना
0: क्यों
1: जो
0: करती है।
1: शब्द होते हैं
0: जी,
1: यही बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं।
0: एक साथी कहते हैं, मुझे दोस्ती पर बहुत विश्वास है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है। ये रिश्ता विश्वास, अपनापन, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम के मजबूत नींव पर टिका होता है। जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता और कठिन समय में सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। विविध भारती के द्वारा हमें आप जैसी सखियों के साथ कई सारे श्रोता मित्र भी मिले हैं। आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से चुना जाता है। यही रिश्ता मुश्किल वक्त में सहारा बनता है और खुशियों को दोगुना कर देता है। दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से हम चुनते हैं, और ये कहते हैं कि दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं।
0: एक साथी कहते हैं, दोस्ती जिंदगी का वो संगीत है जो पतझड़ में भी बहार का एहसास कराता है। ये कोई व्यापार नहीं बल्कि एक आत्मिक संबंध है। यही आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा दोस्त है जिससे आप बिना झिझक अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बहुत
1: बहुत
0: सुंदर बात
1: बहुत बहुत
0: लिखी है।
1: अच्छी बात
0: इसी
1: कही।
0: तरह की बातें हमारे सभी साथियों ने लिखी है।
1: हाँ, तो एक गीत सुने
0: सुनते हैं।

0: तो कितना सुंदर गीत था, और
1: बहुत
0: ये
1: प्यारा
0: गाना सुन के हर किसी को अपने दोस्त की याद आई होगी।
1: बिल्कुल
0: पर जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, भले ही वे हमारे मित्र न हो, पर एक हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं
1: बिल्कुल
0: जिनकी बदौलत हमारी जिंदगी संवर जाती है। जी
1: बिल्कुल। और ऐसे ही लोग होते हैं ना जो हमें प्रेरणा देते हैं कुछ अपने भी जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने की
0: जी
1: और लोगों की सेवा करने की, क्योंकि वो जो सेवा के जरिए अपनी एक पहचान बनाते हैं ना, वो
0: जी
1: सच में बहुत ज्यादा उनको महान हम कह सकते हैं, क्योंकि
0: यानी
1: वो
0: उनसे हमें प्रेरणा मिलती है बहुत
1: बिल्कुल
0: ज्यादा।
1: वो दूसरों की सहायता के लिए अपनी लाइफ को, अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं,
0: जी
1: समर्पित कर देते हैं।
0: जी तो आज हम याद करेंगे कहानी पद्मश्री में डॉक्टर बुधरी
1: बुद्धि दाती,
0: दाती। वो जी
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर बुधरी दाती छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गांव की प्रसिद्ध समाज सेविका है। बस्तर अंचल में उन्हें लोग प्रेम और सम्मान से बड़ी दीदी या बुआ के नाम से जानते हैं। बुधरी दाती का जन्म 15 सितंबर 1966 को हीरानगर गांव में हुआ था। वे बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवार में जन्मी थी।
1: बिल्कुल। और जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण किया। बचपन से ही उनमें पढ़ने की लगन और समाज सेवा की भावना थी। सिर्फ 15 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। कितनी छोटी सी उम्र होती है जब बच्चे खेलना खेलते हैं, आपस में बात करना, अपनी सखी सहेलियों में लगे होते हैं, उस
0: जी
1: समय उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया।
0: यानी हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस उम्र
1: बिल्कुल
0: में इतनी इतनी सुलझी हुई सोच होगी।
1: बिल्कुल। और वर्ष 1981 में उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ली और 1984 में वनवासी समाज के बीच सेवा कार्यों से वो जुड़ गईं।
0: आगे चल के नागपुर में सामाजिक कार्य का उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, और वर्ष 1986 में उन्होंने बस्तर के दुर्गम जिले और जंगल के में पैदल घूम घूम कर लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। उस समय अधिकांश गांवों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना अभियान जारी रखा।
1: और डॉक्टर बुधरी दाती ने 1990 में केवल 11 बालिकाओं के साथ में छात्रावास की शुरुआत की थी, जहां आज उनके प्रयासों से अनेक वनवासी बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने परिवारों को समझाया कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। उनके छात्रावास की कई छात्राएं आज शिक्षिका, नर्स और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
0: और डॉक्टर बुधरी ताती ने मां शंखिनी महिला उत्थान केंद्र की स्थापना करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, साथ ही महिलाओं को बचत, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया।
1: और इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव जाकर स्वच्छता का संदेश दिया, बहुत से नशा मुक्ति अभियान चलाए, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया, साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। बस्तर और अबूझमाड़ जैसे कठिन इलाकों में काम करना आसान नहीं था और वहां पर उन्हें कई सारी धमकियों का और विरोध का सामना भी करना पड़ा था।
0: लेकिन उन्होंने सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे लगभग 570 दूरस्थ गांवों तक पैदल पहुंची, वहां के लोगों का विश्वास जीता। डॉक्टर ताती अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीती है, और उन्होंने अविवाहित रहकर समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वो हमेशा पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई देती है और अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। और डॉक्टर बुधरी ताती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पद, धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए निस्वार्थ कामों में होती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो एक व्यक्ति भी हजारों लोगों के जीवन में आशा और परिवर्तन की नई रोशनी ला सकता है। लगभग 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल। तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी इनका जीवन रहा है और हमेशा इन्होंने दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाया है।
0: अब एक संदेश
1: तो गीत,
0: सुनते।
1: हाँ बिल्कुल, संगीत सुन।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी, तनाव और दबाव से कैसे निपटें?
0: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे मां-बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इंफॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आरती
1: रूठी नहीं है बस मैसेज निकाल रहे थे, कमेंट्स निकाल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे
0: रूठ गई
1: रूठे नहीं है, और क्योंकि बारिश के दिन है, घूमने फिरने का ऐसा मन करता है ना कि चलो इतनी जो बूंदे पड़ेंगी ना चेहरे पे मुंह पे हाथ पे सब बहुत अच्छा लगेगा,
0: वो जो फुहारे आती है ना, पर उसके लिए रिमझिम रिमझिम बारिश चाहिए,
1: तेज नहीं चाहिए एकदम से भागने पड़ जाए, नहीं भैया बहुत हो गया चलो,
0: फिर फिसलने का डर भी है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि अगर तेज दौड़ पड़े बारिश में तो भाई गिर गए तो फिर तो ये बारिश जो है ना हमें बहुत दुखदायक हो जाएगी,
1: पानी भर गया अगर और हम ऐसे ही चल दिए उस पानी भरे में और कुछ पैरों के नीचे आ गया तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो,
0: और उसमें ना हमारे चप्पल या फुटवेयर जो हम पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बारिश वाली जो चप्पल होती है ना उससे छींटे भी नहीं उड़ते हैं और वो इतनी लाइट होती है ना कि वे धंसती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें, तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान रखना चाहिए, और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, ऐसा लग रहा है कि खुला है एकदम मौसम अच्छा है और पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो गई
1: इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना, और बारिश का केवल अगर कहा जाए तो बारिश केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि प्रकृति का एक उत्सव है, है ना, एक उत्सव होता है कि जो धरती को नया जीवन देता है ना, जब बारिश होती है उसके बाद देखो क्या हरी एकदम लाइट हरे, मतलब हल्के हल्के हरे रंग के जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं, मतलब जो सूखी हुई डंडियां जब सूखे हुए झाड़ जो होते हैं ना धूप की वजह से हो जाते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो एकदम खिल जाते हैं, जैसे
0: हरी हरी कोपले आ जाती है, और जैसे ना हम बाहर घूमने जब जाते हैं ना तब देखते हैं कि ऐसा लगता है कि धरती माता ने हरी रंग की शाल ओढ़ ली है,
1: बिल्कुल इतना अच्छा आंखों को लगता है ऐसा, दिमाग को इतना ज्यादा शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा रहता है, और जैसे ही आसमान से बूंदे बरसती है ना तो सूखी धरती जो है वो मुस्कुराने लगती है कि चलो
0: हम भी हमारी तरह,
1: बिल्कुल, और पेड़ पौधे हरियाली की नई चादर ओढ़ लेते हैं और नदियां झरने और पहाड़ जो है वो अपनी पूरी शोभा में नजर आने लगते हैं, ऐसे मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं,
0: और मानसून का मौसम पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता आरती, बादलों से घिरी पहाड़ियां, धुंध में लिपटी घाटियां, वर्षा की रिमझिम फुहारे और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को अद्भुत सुकून देती है, और बारिश के दिनों में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है, झरनों का उफान, जंगलों की हरियाली और खेतों की लहलाती फसलें यात्रियों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती
1: है। सच में अब हम अगर हम अपने किसी गाड़ी से जा रहे हैं ना तो या ट्रेन से भी जा रहे हैं तो ये जो दृश्य होते हैं ना ऐसे मनमोहक होते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे चित्र उकेर दिए हों धरती पे ना, बहुत सुंदर लगता है, और यही कारण है कि मानसून जो पर्यटन है वो आज देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, लोग शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने निकल पड़ते हैं, लेकिन प्रकृति जितनी मोहक होती है उतनी ही संवेदनशील भी, बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद सभी तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सावधानी भी जुड़ी हो,
0: और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और हम बारिश की बातें कर रहे थे आरती,
1: बारिश की बातें कर रहे थे हम और साथ ही तेज, जो जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूस्खलन भी हो जाता है वहां पे कभी कभी ऐसी जगहों पे, जब अचानक बढ़ता जलस्तर और जो फिसलन भरे रास्ते हैं और खराब जो दृश्यता होती है वो यात्रा को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए पहले से ही, और अगर किसी क्षेत्र में भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है तो यात्रा स्थगित कर देने में ही समझदारी है। यात्रा के दौरान रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जूते, अतिरिक्त कपड़े, प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और मोबाइल के लिए वाटर प्रूफ कवर जरूर याद करके रख लें।
0: बिल्कुल रखना जरूरी है, अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम तो फिर लोगों के संपर्क से टूट ही जाएंगे ना।
1: और जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती ना वो तो बहुत जरूरी है।
0: और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ही चलना जरूरी है। चेतावनी बोर्डो की अनदेखी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। नदी, झरने या तेज बहाव वाले स्थानों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में सुंदर तस्वीरें और रील बनाने का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सावधानी में ही बहुत ज्यादा सुरक्षा है।
1: बिल्कुल,
0: तो भले ही आज रील ना बन पाए तो उसमें दुख करने की जरूरत नहीं है,
1: बाद में बना लीजिए अगली बार,
0: क्योंकि जान है तो ये खूबसूरत जहान है।
1: बिल्कुल, और कई बार लोग रोमांच के नाम पर खतरनाक चट्टानों, झरनों और किनारों या उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसे जोखिम केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत तस्वीर वही है जिसे सुरक्षित घर लौटकर हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं।
0: ये बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी अच्छी तरह जाँच कर लेना चाहिए। टायर है, फिर ब्रेक है, वाइपर है, हेडलाइट पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। धीमी गति से वाहन चलाए, पर्याप्त दूरी बनाकर रखे और जल भराव वाले रास्तों से हमें बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक यात्रा न करने से बचना चाहिए और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हमें बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए केवल स्वच्छ और ताजा भोजन करें जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं, और पर्याप्त पानी पिए, और भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने। हम लोगों की बारिश की भीगने की बातें कर रहे थे तो सूखे कपड़े आप तुरंत पहन लें। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में हो तो उनकी सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन केवल प्रकृति का आनंद लेने का माध्यम नहीं है बल्कि उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है।
0: और सबसे जरूरी बात है आरती कि जब भी हम बाहर जाए स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फैलाए, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। ध्यान रहे प्रकृति हमें जितना देती है उसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है, और बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां संतुलन में छिपी होती है। उत्साह और सावधानी, रोमांच और जिम्मेदारी, आनंद और अनुशासन के संतुलन में
1: बिल्कुल
0: होता है।
1: बहुत सही कहा आपने। और जब हम पूरे ध्यान से सावधानियों के साथ यात्रा करते हैं तो मॉनसून की हर बूंद यादों का मोती बन जाती है और हर सफर जीवन की अनमोल धरोहर बन जाता है, क्योंकि बारिश का असली आनंद तभी है जब यात्रा सुरक्षित हो, प्रकृति है वो सुरक्षित हो और मुस्कान सुरक्षित घर तक लौटे। और सावधानी रखें कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी या चेतावनी अगर कहीं दी जारी की गई है तो उस जगह की यात्रा को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए और बाद में जब सही हो जाए तब आप जाइए।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं
0: गीत।

0: हाँ सुना ली, बारिश के दिनों की जो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सखियां सखा जितने भी सब लोग हैं ना, सभी लोग अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी कल ही मेरी दो छोटी बहनें अपनी सकुशल अमरनाथ यात्रा से आई, मैं स्वास्थ्य कारणों से जा नहीं पाई, लेकिन उनकी काफी कठिन और मुश्किल भरी यात्रा थी। बारिश के कारण कई सारी रुकावटें भी आई, लेकिन सावधानी से की गई उनकी यात्रा आनंददायक और यादगार रही। क्या
0: बिल्कुल
1: बात है।
0: बिल्कुल, यादगार बन जाती है यात्रा जब हम सावधानी बरतते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, तो कोई जब परेशानी नहीं होती है तो फिर हम उसका लाभ भी उठा पाते हैं अच्छे से। हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि कल्याण से पुणे जाते समय ये नज़ारा बहुत देखने को मिलता है कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन का जाना और हरे भरे पहाड़ियां, बादल और कहीं कहीं पहाड़ों से पानी गिरते हुए देखना बड़ा ही सुखद और मनोरम होता है। चलिए आप किसी चीज में जा रहे हैं, से ट्रेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आप उसमें से बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पैदल जाते समय बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल में ही आपका ध्यान ना रहे, सड़क पे भी ध्यान रखिए, जहां पे आप चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए कि आप कोई पहाड़ी पे तो नहीं है। इस तरह से अपनी सावधानी के साथ में आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मानसून के दौरान यात्रा करने के कई अनूठे फायदे और अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता का चरम इस मौसम में पहाड़, जंगल और घाटियां जीवंत हो उठती है। झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। धुंध और बादलों का खेल दृश्यों को जादुई बना देता है। सस्ता और किफायती सफर, मानसून को पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान होटलों, फ्लाइट्स और स्थानीय यात्रा पैकेजों पर भी बहुत सारी छूट होती है। और ये कहते हैं कि इन दिनों मौसम बहुत सुंदर होता है।
0: ये तो है। और एक हमारे साथी हैं जो अभी वहीं पे हैं, मतलब अभी घूमने गए हुए हैं, तो बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां के बारे में बता रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ही दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर। इस समय बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी हो रही है, यानी भूस्खलन भी हो रहा है, और सावधानी पूर्वक हम इसलिए होटल में रुके हुए हैं और मौसम ठीक होने पर ही हम दर्शन करने जाएंगे। ये वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, मतलब वो दर्शन करने गए हुए हैं तो वो भी होटल में रुके हुए हैं, तो आप तब तक सावधानी पूर्वक रुके रहिए जब तक मौसम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और रास्ता साफ नहीं हो जाता।
1: वैसे हमारे अन्य साथियों ने भी इसी विषय में बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं कि बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद प्राकृतिक हरियाली, ठंडी हवा और बहते झरनों का अनुभव कराता है, लेकिन इसके लिए वाटरप्रूफ पैकिंग, सुरक्षित जगहों का चुनाव, खान पान में सावधानी बेहद जरूरी है। बारिश में पर्यटन का आनंद मनमोहक हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे खिल उठते हैं, जिससे चारों तरफ ताजगी रहती है, शांत वातावरण, भीड़ भाड़ कम होने से सुकून और शांति मिलती है। और ऐतिहासिक जगह जैसे मांडू है, ओरछा, उदयपुर, ऐसे ऐतिहासिक स्थान बारिश में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जरूरी सावधानियां, हमें छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग, हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही कहते हैं कि अच्छी पकड़ वाले स्किड जूते पहने, स्किड एंटी स्किड जूते पहने, और खान पान हमेशा ताजा भोजन खाएं, साफ या उबला पानी पिए। इसी तरह की बातें
0: एक
1: लिखी
0: हमारे
1: है।
0: साथी हैं जो लिखते हैं कि बता रही हैं कि मेरे पति की पोस्टिंग बारिश के मौसम में बांध यानी कि डैम पर होती है। करीब 3-4 साल पहले की बात है, उस समय बांध के आसपास ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ परिवार वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे, मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वो नदी या पानी के बीच में ना जाए क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और बीच में चले गए। तभी ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बांध का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग बह गए। बहुत बड़ी ये तो दुर्घटना हो गई, उन्होंने बताया कि मतलब बार बार चेतावनी होने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना।
1: ये बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं करना
0: बिल्कुल,
1: चाहिए। उसे हमें बहुत सावधानी से उस वक्त उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से हमें बरतना चाहिए।
0: हम क्योंकि हमारे पास हम अपनी जिम्मेदारी तो होती है, साथ में परिवार की है, जो भी लोग हमारे साथ में गए हैं, इतने सारे लोग गए हुए हैं,
1: जी
0: तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। और सरकार हमारे भले के लिए ही कहती है, वो
1: जी
0: चेतावनी जारी करती है कि हम अपनी जान को बचा सके, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब कहा जाता है, तो उसका पालन जरूर करिए।
1: और सबसे जरूरी बात है कि बारिश में थूकना वगैरह, ये सब गंदी आदतों को हमें भूलना चाहिए। वैसे तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर सकती है। और अब क्या किया जाए आरती? एक गाना
0: एक गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: अब हम बात करने जा रहे हैं एक बुरी आदत के बारे में, है ना
1: एक
0: सोनाली?
1: हमारी सखी ने लिखा है आरती कि जिस जगह को हम अपनी नहीं समझते उसे गंदा करना आसान लगता है, लेकिन शहर भी आखिर हमारा ही घर है,
0: बिल्कुल.
1: ये विचार नहीं रखते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, एक 4-5 साल के बच्चे ने दीवार पर थूका। मैंने
0: ओ
1: पलट कर देखा तो बोला, चाचा भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं, पर मन में विचार आया कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा
0: वो
1: ही
0: तो है,
1: करते हैं।
0: बच्चे वही
1: बहुत
0: सीखते हैं
1: सही बात
0: जो,
1: लिखी है
0: बिल्कुल
1: कि बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अपनाते हैं। तो हमारी ये कोशिश हो कि थूकना तो है ही नहीं, बिल्कुल जो पीकदान बनी होती है उसी में थूकना है, और अपने घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं उसे भी साफ रखना बहुत
0: बिल्कुल.
1: जरूरी है। थूकने के बाद में उसमें भी पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम विदेशों में एहतियात बरतते हैं कि हम गलती ना करें, पर अपने देश में गलती को बार बार करते हैं. मैंने किसी से सुना कि खाड़ी देशों में अगर आप सड़कों पर जहां तहां थूकते हुए पाए गए तो उनके पास स्प्रे जैसी कुछ चीज होती है जिसे वो आपके मुंह में स्प्रे कर देते हैं, जिससे आपके मुंह में सूजन हो जाती है और आपका मुंह सूज जाता है, यही सजा दी जाती है. तो ये इस तरीके की चीजें अब हमें तो नहीं पता है, खैर ये बता रही है इस तरीके की चीज, लेकिन ये जो मैसेज है कि भाई थूकना बहुत गलत है तो
1: जी
0: वो तो आप कहीं भी मत करिए, क्योंकि जो सड़क भी है इसके भी ये भी हमारी ही है, समझ, ये
1: जी
0: सरकार की नहीं, ये जो हम टैक्स देते हैं उससे उसको ठीक किया जाता है. तो ये इस तरीके की चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही
1: वैसे
0: हमें
1: ही अपने घर के
0: सड़क को,
1: बाहर भी स्वच्छता का
0: बिल्कुल
1: ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इंदौर शहर में कोई व्यक्ति थूकते पकड़ा जाता है तो उसे ₹500 का जुर्माना लग जाता है।
0: अरे
1: तो ये तो बहुत सही है।
0: इसी तरीके की जब जब इस तरह की जब सजा मिलती है या इस तरह की चीजें जब निर्णय दिए जाते हैं ना कि आपको ऐसे देना है, पैसे देने, जुर्माना देना है, तब हम उस चीज को थोड़ा सा सोच के करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ जाएंगे इसलिए ना करें. तो ऐसे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे.
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि पान मसाला और गुटखा खाने की लत के कारण लोग बार बार कहीं भी थूकने पर मजबूर हो जाते हैं, और मानसिकता, सफाई के प्रति लापरवाही और सामाजिक आचार संहिता का अभाव इस आदत को और भी बढ़ावा देता है।
0: एक साथी लिखते हैं कि अपने अपने थूकने वाले लोग ये नहीं देखते कि उनके पीछे और भी लोग आ रहे हैं, और ये बहुत ही गंदी आदत है, इसके लिए इस चीज को नहीं होना चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बस किसी ऑटो में बैठे हैं या बस में बैठे हैं तो हम मुंह निकाला थूक दिया, क्योंकि नीचे और जो चल रही सड़क पर चल रहे हैं लोग उन पर भी कभी कभी उनके कपड़ों पर गिर जाता है कभी कभी, इस तरह. तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह से नहीं करना
1: कई बार
0: चाहिए.
1: जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तब भी ऑटो वाले जो भैया होते हैं वो हालांकि दिन भर वो काम करते रहते हैं, पर जरूरी नहीं नहीं वो चलाते चलाते ऐसे थूक देते, तेज हवा आई तो उसका छींटा जो है पीछे वाले लोगों पर आ सकता है। और
0: बिल्कुल
1: एक साथी ने लिखा है कि खुले में थूकने से टीबी और अन्य सांस संबंधी संक्रमण हवा और सतह के जरिए तेजी से फैलते हैं। गंदगी से गलियां, दीवारें और सार्वजनिक स्थल बदरंग और गंदे हो जाते हैं, जो शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं, और साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है क्योंकि हवा से जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें थूकने की आदत को तो अलविदा
0: बिल्कुल
1: कहना ही
0: बिल्कुल.
1: चाहिए।
0: और एक साथी जो लिखते हैं कि एक सभ्य इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है. जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं भी थूक देता है तो उसे देखकर मन में खिन्नता होना स्वाभाविक है. तो ऐसी आदतें न केवल वातावरण को अस्वच्छ बनाती हैं बल्कि कई बीमारियां फैलने का भी कारण बनती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए हमें.
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरी शॉप के आगे जब लोग थूकते हैं तो मैंने साफ शब्दों में मना करता हूँ, ऐसी जगह मक्खी मच्छर होते हैं जो बीमारी का कारण बनता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक कानूनी अपराध है, और इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये दंड जो है ये तो लोगों को डराने के लिए, एक आदत लगाने के लिए दंड है, पर हमें खुद से ही इन आदतों को अपनाना चाहिए कि इसके साथ सामने वाले के साथ साथ हमारा भी इसमें फायदा ही होता है।
0: बिल्कुल. एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक गुजरात के बड़ौदा जो बस अड्डा है वहां पर पान मसाला तंबाकू पाए जाने पर जुर्माना लगता है, और मेरे सामने एक बार बस में मैं जब बस अड्डे पर खड़ा था तो एक भाई ने तंबाकू की पूड़ी निकाली, दोनों हाथों से उसको बना रहे थे, तो सिक्योरिटी वाले आए और ₹200 का दंड किया, का जुर्माना भी लगाया, और तंबाकू जो बना रहे थे वो पूड़ी उसको भी ले गए. और स्वच्छता का अभियान और स्वस्थ रहने का अभियान चलाया जाता है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे.
1: और अब गीत सुन ले।
0: गीत सुन लेते हैं.

0: हाँ सोनाली, अब हम बात करेंगे कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में, है ना। तो हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि रसोई में काम करते समय तेल की छींटे उंगलियों और हाथों में लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लग जाए तो आप पहले ठंडे पानी के नीचे रखें अपने हाथ को, और वहां पर मलाई से कुछ दही लगा लीजिए, कुछ ठंडी चीज लगा लीजिए, ये जलन को भी शांत कर देता है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। और अधिक जल जाए तब तो फिर मरहम और डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। और हल्की फुल्की जलने पर ठंडा दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कभी कभी तवे पर उंगलियां सट जाती हैं या पकौड़ियां तलते समय उंगलियां तेल में टच कर जाती हैं, तो ऐसे में आप ठंडा दूध या थोड़ी देर में पानी में रखने पर भी जलन खत्म हो जाएगी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि किचन में जो हम हाथ अगर कट जाता है तो उसमें तुरंत ही सरसों का तेल लगा लिया जाए तो खून रुक जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है, और उसी जगह पर चीनी लगा ले तो खून तुरंत रुक जाता है। ये काम मैंने बच्चों पर खूब आजमाया है, बच्चे अक्सर गिर जाते थे, होंठ कट जाता था तो चीनी लगा देती थी, जलने पर तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ या टूथपेस्ट लगाना चाहिए, हो सके तो अगर ज़्यादा चोट है तो डॉक्टर के पास
0: बिल्कुल
1: जाना ज़रूरी है।
0: ज्यादा चोट है तो आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें,
1: बिल्कुल
0: सीधे
1: तुरंत ही
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: के
1: के
0: पास
1: पास
0: जाएं,
1: जी।
0: और छोटे मोटे चीजों में ही है आप इसको अपनाएं। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि और कुछ अगर पास में नहीं है तो आप बोरो प्लस भी लगा सकते हैं, वैसे आप कोई चीज तरह की कोई चीज आप लगा सकते हैं। और साथ ही आप कोई घरेलू जैसे कि आलू वगैरह है इनको
1: जी
0: काट के लगा सकते हैं।
1: एक ने लिखा है कि अगर उंगली जल गई है तो हल्की हल्की सिकाई करके उसे ठीक कर सकते हैं, पानी में उंगली डाल दी तो फफोला पड़ना अनिवार्य है, किंतु यदि जले हुए त्वचा का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उचित उपचार की आवश्यकता है। और इन्होंने वही कहा है कि बर्फ से सिकाई करना है, उसके बाद में बहते हुए पानी के नीचे हाथ धोना है, उसके बाद में सबसे पहले है कि उसको धोना जरूरी है कि उसमें जो कुछ कीटाणु अगर लग गए हैं तो उसे बह जाने देना है, और उसके बाद में साफ पट्टी चिपका ले। इसके बाद में इसी तरह का उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए अगर जल गया है तो, सीधी बर्फ ना लगाए और घाव सूजने से पहले जली हुई जगह से अंगूठी या तंग कपड़े या धीरे से हटा दे। और उन्होंने कहा कि छाले जो आ जाते हैं ना उंगलियों में पड़ जाते हैं छाले, तो उन्हें फोड़ना नहीं छालों को, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल, सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको बर्फ के पानी में, ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रखिए बहते पानी में, तो उससे रहता है ना कि ठंडक पड़ती है और जलन जो है वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई अगर बहुत ज्यादा जल गया तो अपनी तरफ से कुछ उसमें मत लगाइए, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं।
1: और आप क्या करें,
0: ये गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो आरती, सखियों के हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों को हम शुक्रिया कहते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करते हैं बातें और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम श्रोताओं को विविध भारती से और विविध भारती को श्रोताओं से जोड़ने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम बोल रहे हैं अतीक खान बोल रहे सर।
0: कहाँ से?
1: सर गांव का नाम है भरोदिया बल्लर और जिला लगता है सागर।
0: सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं?
1: जी सर।
0: तो सागर से कितनी दूर हुआ आपका गांव?
1: सर गांव है 25 किलोमीटर का, दूर दूरी पे है।
0: अच्छा, और बताइए बारिश वारिश कैसी हो रही भाई?
1: सर अभी तो सर बारिश नहीं हुई सर, एक हफ्ता हुआ अभी तो सर बारिश।
0: अपने गाँव में खेती कहाँ होते है?
1: सर खेती अपने यहाँ होती है थोड़ा इनकी।
0: नदी अद्दी कोई?
1: नदी ही देखिए यहाँ पे सर।
0: तालाब?
1: छोटी नदी है, छोटी बहुत नदी है।
0: तालाब बह थे कोई?
1: नहीं सर, तालाब है तो सर अपने गांव में नहीं, पर दूर पे तालाब थोड़े यहाँ से।
0: हो, बाकी का हाल चाल?
1: सर सब बढ़िया है, आप लोग की दुआएं सर।
0: अच्छा, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सर आज गाना सुनना है आज की मूवी का।
0: कौन सा गाना?
1: नगर के सामने जिगर के पास।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंसमेल बुगला।
0: अच्छा जी
1: सर, आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था सर, आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया, आज क्या गाना सुनाने वाले हैं बताइए
1: जी। मैं आज सुनाता हूँ।

0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही मशहूर भजन है।
1: जी, ये मैं भजन सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, विविध भारती बम्बई मेरा फोन लग गया सर।
0: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, क्योंकि हम दिव्यांग आदमी है, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सहारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के पनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये आप सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे, हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं।
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइश आती हैं?
1: नहीं सर जी, नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
0: लेकिन नाम एक ही है?
1: नहीं नहीं सर, उस नाम से दतरंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो
1: जी सर
0: बताइए
1: जी,
0: क्या हाल चाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब भाई सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या
1: हाँ,
0: गतिविधियां चल रही
1: अभी
0: हैं?
1: धान का रुपाई का काम जारी है।
0: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़?
1: जी सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़ जी
0: किस किस तरह के चावल उगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ? मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी हमारे यहाँ।
0: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
1: हाँ सर जी,
0: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
0: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं सिमीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए जी, क्या हालचाल है?
1: सर ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर?
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे। अच्छा। कॉल भी लग गई, काफी टाइम के बाद कॉल लगी हमारी आज। आपके शो सुनते हैं सभी
0: जी,
1: तो संडे को आते हो आप शाम को हवा महल में, तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और देखिए कितने सारे श्रोता फोन करते हैं, लेकिन सभी का फोन नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे देश के अलग अलग श्रोता जब एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ लोग हैं जिनकी कॉल लग जाते हैं, और आप उन खुश नसीबों में से एक हैं। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: सचिनों का नाम डाकू और गाना है कभी गम से दिल लगाया।
0: क्या बात है, चलिए पूरी करते हैं अपनी बातचीत और सुनवाते हैं डाकू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल है भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी।
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी
1: हाँ
0: के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते। फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर मैं।
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी दिन के सर आपका रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते हैं सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागंता रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: डर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मरग से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था यहाँ पे, बहुत नुकसान भी हुआ।
0: अच्छा, और अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है?
1: हाँ आज धूप भी है।
0: कश्मीर में बारिश का मौसम किन महीनों में होता है?
1: लगभग ये हर महीने होता है।
0: हाँ, हर महीने होता है,
1: बीच में होते हैं।
0: सोनमर्ग तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
1: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम वगैरह सभी ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है?
1: वो जाती है लेह लद्दाख की।
0: जी जी, आप गए हैं उस तरफ?
1: हाँ मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
0: अच्छा, लेह लद्दाख जाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है? फिटनेस किस तरह की होनी चाहिए?
1: वहाँ पे ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग 1 दिन और 1 रात लग जाता है लेह में जाने में।
0: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है?
1: हाँ हाँ लगभग हार्ट में दर्द होता है, ऐसा लगता है।
0: जी, लेकिन वहाँ घूमने लायक इलाके हैं।
1: हाँ सर
0: जी, आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी?
1: और हमें सुने कुदरत फिल्म का, तूने और रंगी इलाके सा जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, कैसे हैं यूनुस भाई? मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से सुजीत राय, और मैं बताऊं सर, मैं बचपन से दिव्यांग हूं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
0: ओ ओ, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहां से की है भाई?
1: सर, मुझे सबसे ज्यादा म्यूजिक में रुचि है सर, तो मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक में ही लगाव रखता हूँ।
0: आपने कहाँ से सीखा?
1: सर, मैं कहलगांव में ही एक मार्स में ही संगीत विद्यालय है, मैं वहाँ से ही सीखा था।
0: अच्छा, तो कोई डिग्रियां या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं आपने?
1: जी सर, मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ संगीत में।
0: और ये जो संगीत की शिक्षा हो रही है, ये गायन की हो रही है या वादन की हो रही है?
1: सर जी, मैं गायन सीखता हूँ।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बताइए हमारे लिए क्या सुनवाने वाले हैं आज? अब
1: सर, मैं तो दस्तक फिल्म का एक गीत सुना हूँ, और आवाज लता दीदी की है, और गाने के बोल हैं भैया ना धरो बलमा।
0: क्या बात है, इससे मिलती जुलती कोई शास्त्रीय बंदिश याद है आपको?
1: जी सर, एक वो गाना है ना, राग देश, मुझे याद है, अगर कहेंगे तो सर मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ।
0: जरूर।
1: ये राग देश है। बादल रे उमड़ घुमड़ घन बर से बिजली चमक जिया डरात बादल रे, ये सब सीखा है।
0: वाह वाह, शानदार। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर।
0: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर हम बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी बोलिए
1: पृथ्वीराज
0: बोलिए।
1: यादव।
0: पृथ्वीराज यादव जी, मुझे ये बताइए बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बोल रहे हैं आप?
1: जी जी इसका एक एरिया है सर, अपना गांव न्यूसी लगता है।
0: अच्छा, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दायरे में कितने गांव आते हैं?
1: सर गांव तो बहुत सारे आते हैं, 105 के करीब।
0: अरे बाप रे। और ये बारिश के दिनों में तो बांधवगढ़ में पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाता है ना?
1: जी 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के लिए बंद होता है सर।
0: अच्छा, इस बीच में आप लोग तो चूंकि गांव में ही हैं और उस दायरे के अंदर हैं, तो क्या आपको साइटिंग्स होती हैं? आपको दिखते हैं टाइगर्स?
1: जी टाइगर तो हमेशा 12 महीने दिखते हैं सर, क्योंकि अपना गांव एकदम कोर से सटा हुआ है जंगल से, तो उनके दर्शन तो हमें सुबह शाम ही हो जाते हैं।
0: आप लोग किस तरह की सावधानियां रखते हैं ताकि कोई घटना ना हो?
1: सर देर रात जैसे टाइम से हम जब लोग जाते हैं तो दिन में जाते हैं, शाम के या सुबह टाइम ज्यादा जंगल में नहीं जाते सर।
0: मान लीजिए कि हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाना हो, हमें या हमारे किसी साथी को, तो आप तो उस इलाके के हैं, तो हमें ये बताइए कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है जब साइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं?
1: सर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी।
0: नवंबर से फरवरी, और दिन का कौन सा वक्त?
1: दिन का वक्त वही सर 9 से 12।
0: अच्छा, 9 से 12 में साइटिंग ज्यादा क्यों होती है भाई?
1: सर उस समय सब अपने विचरण के लिए निकलते हैं ना सर।
0: अच्छा, आपको सबसे अच्छा जो दृश्य देखने को मिला वो क्या मिला था?
1: सर यहाँ तो सबसे अच्छा दस बांधवगढ़ का एरिया है सर, उसके अलावा एक झरना प्रपात है हमारे गांव के बाजू में, वो भी बहुत अच्छा है सर, और हमारे यहाँ के मोर बहुत अच्छे हैं सर।
0: मोर? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, यानी आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह रहे हैं।
1: जी प्रकृति का संदार है सर यहाँ।
0: और आपका काम क्या है भाई?
1: सर हमारा ऑनलाइन डिलीवरी वाला काम करते हैं सर।
0: उस इलाके में?
1: जी जी।
0: तो मोटर बाइक से घूमते हैं?
1: जी जी जी।
0: अच्छा, विविध भारती की आपके जीवन में क्या जगह है?
1: विविध भारती हमारे जीवन में बहुत अच्छा है सर, हमें सूचना ज्ञान मनोरंजन जो कुछ भी मिला बचपन से लेके अभी तक, हमारे यहाँ आकाशवाणी केंद्र शहडोल है सर, वहाँ से सुनाई देता है आपका आकाशवाणी, तो यहीं से हम पले बढ़े हैं, और सबसे अच्छा रेडियो ही है, रेडियो से अच्छा आज तक हमारे यहाँ कोई प्रसारण का केंद्र नहीं है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात आपने बोली। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं भाई आप?
1: सर हम आज गाना सुनना चाहते हैं, आ अब लौट चले। ओ यारो माफ करना कुछ कहने आया हूँ।
0: चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम यानुस भाई
0: जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं?
1: हिलाल अहमद श्रीनगर से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं भाई आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो सर?
0: जी हम अच्छे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या काम करते हैं जनाब?
1: हम यही शाल काम करते हैं।
0: ओके, तो मुझे फिर ये बताइए कि एक अच्छे पश्मीने की पहचान कैसे की जा सकती है?
1: अच्छी पश्मीने की पहचान, इसकी क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें तो बहुत दाम मिलता है। बाहर कंट्री में भी वो जाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं इस पे, तो अच्छी तरीके से बनाते हैं, फिर हमें बहुत कीमत मिलता है।
0: बहुत शुक्रिया। मुझे एक और बात बताइए कि ये जो पश्मीना है, कुछ बहुत भारी पश्मीने होते हैं और कुछ कम सर्दियों के लिए होते हैं, तो जो टूरिस्ट वहाँ आते हैं वो किस तरह से पहचाने कि उनकी जरूरत का पश्मीना कौन सा है?
1: टूरिस्ट यहाँ आते सर, वो भी इससे खरीदे, यहाँ उनको भी वो बहुत पसंद है, लेकिन इसमें तो ईमानदारी की बात है। दरअसल जो भी ये भेजेगा तो वो सही होना चाहिए।
0: जी, और एक अच्छा पश्मीना शॉल बनाने में आपको कितना वक्त लगता है?
1: सर इसमें तो बहुत डिजाइन है आते हैं, इसमें मतलब जो इस पर वो नक्शा होता है ना, वो बहुत किस्म के होते हैं, उसमें मुख्तलिफ बड़े वाला छोटे वाले पुरमतन के आते हैं, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। जो पुरमतन होता है ना, उसमें तकरीबन 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने भी लगते हैं, तो जो उसके छोटे साइज वाले हैं उसमें 1 महीना भी लगता है, तो इसी तरीके से हम बनाते हैं।
0: जी शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आपने हमें बताई। और अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कुमार सानू की आवाज में, फिल्म का नाम है साथी, जिंदगी की तलाश में है, मौत के कितने पास आ गए।
0: वाह क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: दिलों की नगरी जयपुर, राजस्थान से।
0: क्या बात है, क्या मौसम है वहाँ?
1: मौसम सुहाना है सर।
0: बारिश बारिश
1: है, बारिश हल्की हल्की हो रही है, तेज भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, औसत मिनिमम बारिश हो रही है।
0: क्या बात है, और बारिश के मौसम के मजे क्या हैं?
1: सर बहुत ही आनंद आता है बारिश का मौसम, सबसे मुझे तो प्यारा लगता है।
0: तो झीलों की नगरी के लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए?
1: उदयपुर में तो बहुत सी जगह है पिकनिक मनाने के लिए। संडे रात तो बहुत भीड़ थी सभी जगह पर, आज पूरा न्यूज पेपर उसी से भरा हुआ है। इतनी भीड़ हुई थी सभी जगह पर, पिकनिक मनाने लोग गए थे।
0: अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: जी सर, पुरानी फिल्म में राज कपूर और नरगिस दत्त की श्री 420 गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
0: क्या बात
1: मालूम
0: है?
1: नहीं कहाँ है मंजिल।
0: ये बिल्कुल बारिश का आपने गाना चुन लिया है।
1: छतरी के नीचे दोनों भीगते हुए गाना गाते हैं।
0: तो बातों का सिलसिला रोकते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से, और हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02-2867-02-88, दूसरा टेलीफोन नंबर 0224002-4662 यानी 02-2400-2462। आपको बता दें कि आज जिन श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स लगे हैं वो अगले दो महीने तक हमें फोन न करें ताकि दूसरे श्रोताओं को मौका मिल सके। तो अब चलने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का था। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

बहुत लोग साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना। किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

पहाड़ कभी एक दिन में नहीं दरकते, उनके भीतर दरारें बहुत पहले पड़ जाती हैं। किसी को इसका आभास नहीं होता, लेकिन जब वे टूटते हैं तो सबको लगता है कि ये अचानक हुआ। ठीक ऐसे ही हर रिश्ता शब्दों से नहीं टूटता, कई बार वो उन बातों से टूटता है जो कहीं ही नहीं गई होती। जी हाँ, जो कहीं ही नहीं गई होती।

0: मुझे न कोई मंजिल, जाऊं कहां बताए दिल।
1: छाया गीत में अब लेते हैं एक अंतराल।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दो चेतनाएं धीरे धीरे ये तय करने लगती हैं कि वे एक दूसरे को ऊपर उठाएंगी या भीतर से खोखला कर देंगी। अगर दो दिलों का तालमेल सही है तो वहां प्यार, इज्जत, एक दूसरे को समझने की गुंजाइश होगी और इन सब के बीच जो धागा इस रिश्ते को हर दिन नया रखेगा वो है रोमांस। हाँ, रोमांस, वरना तो अंतरिक्ष और जमीन के बीच जितनी गहरी खाई ही होगी।

कभी-कभी लगता है एक खामोश सा दर्द है जो चीखता नहीं, सीने में भारी होकर बैठ जाता है बस। हाँ, हर वक्त खामोशी अच्छी नहीं होती। रिश्तों में संवाद की एक छोटी सी खिड़की खोलकर हमेशा रखनी चाहिए। खुली खिड़की मन रूपी आंगन में रोशनी लेकर आती है, लेकिन हम अपनी धारणाओं की दीवारें बहुत ऊंची करते चले जाते हैं और इन दीवारों को फिर किराया नहीं जा सकता।

0: जीवन में प्रेम का आना एक अद्भुत और अप्रतिम अनुभव होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी हम एक ऐसे रिश्ते में उलझ जाते हैं जहां आनंद केवल क्षणिक होता है और दर्द नियति बन जाती है। वो प्रेम नहीं होता, एक भावनात्मक तूफान होता है और हम उसमें घिरते चले जाते हैं। तब भीतर से एक सवाल उठता है, पहले जो था वो क्या था, वो अब कहाँ गया?
1: मेरी दुनिया

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए आनंद लेते हैं फिल्मी तरानों का और सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें
2: मैं अजय देवगन मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया जाग ही जाग सफाई बेदाग तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्मी गानों के तरानों का आनंद अभी आप ले रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत में। ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: नंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
1: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के

0: उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
1: श्रोताओं, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
0: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
1: श्रोता, उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
0: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
1: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
0: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
1: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्याग पत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
0: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
1: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
0: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
1: श्रोताओं, आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
0: जी
1: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
0: लब्ध प्रतिष्ठ।
1: इसका अर्थ है
0: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
1: तो श्रोताओं, अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
1: श्रोताओ, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम, शीर्षक है पहली बूंद।
0: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है। ना।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, Without Pasteur, I would be nothing.
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।

0: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
0: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
2: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
3: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
2: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
3: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
2: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
0: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
4: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
5: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
0: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता

0: बताता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
1: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है, और अच्छी बात यह है इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए यह विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया, और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा। हाँ, इंजेक्शन लगा दूँ?
3: I am sure, 100%, सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताईं।
5: सर, सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
5: क्या हुआ सर?
3: देखो, टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
5: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
5: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर, देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
6: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
3: देखिए आप,
6: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
6: मेरा अच्छा, बेटा।
3: अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र

0: में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था। अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना,
4: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम के 6:30 हुए हैं। अब वक्त है लोक संगीत के कार्यक्रम का आनंद लेने का। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं और अब समय हुआ है भक्ति संगीत के कार्यक्रम संध्या वंदन की ओर चलने का। तो चलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा,
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या वंदन। शाम के 7 बजने वाले हैं और अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार।

0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी भी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। लोकसभा ने ये विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य की सहायता करना जारी रखेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि वायुसेना, SIDM, उद्योग और स्टार्टअप समुदाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बाकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयंबटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयंबटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, से कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसमें

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल का प्रसारण। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर

शाम के 7:10 होने वाले हैं। संदेशों के बाद अब वक्त है प्रादेशिक समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी भोपाल से।

0: करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केला उत्पादक किसानों को 107 करोड़ 72 लाख रुपए की राहत राशि जारी की। और दतिया विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान, शाम 6 बजे तक हुआ 71.44% मतदान। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कर दी है। यह विधेयक कल लोकसभा में पारित किया जा चुका है। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने जैसे कठोर दंड इसमें शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का भी प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह परियोजना मेक इन इंडिया और दुनिया के लिए भारत में निर्माण के संकल्प को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, भरोसा और नवाचार के दम पर भारत वैश्विक टेलीकॉम विनिर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल झाबुआ जिले के थानला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्वसहायता समूहों के क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 175 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 109 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में स्वसहायता समूहों, किसानों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में बन रहे रेप्टाइल पार्क और अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि होमगार्ड के जवानों को सांपों को सुरक्षित पकड़ने और उनका रेस्क्यू करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे रिहायशी इलाकों में सांप निकलने पर

लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वन्यजीव संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये सर्प उद्यान शोध, संरक्षण और जनजागरूकता का प्रमुख केंद्र बनेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।

0: या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने आज बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव से वर्चुअल रूप से जुड़कर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 8,000 से अधिक केला उत्पादक किसानों के खातों में 107 करोड़ 72 लाख रुपए की राहत राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बुरहानपुर के केले और केले के रेशे से बने उत्पाद अब देश के साथ साथ विदेशों में भी नई पहचान बना रहे हैं।
2: एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण को राष्ट्रीय सम्मान मिला और अब केले के रेशे से कपड़े उत्पादन के लिए भी हम लोग और न केवल कपड़ा बल्कि सजावटी सामान से लेकर कई प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जो कमाई हो रही है वो देश विदेश तक बुरहानपुर की पहचान बन रही। फसल के विविधीकरण में भी बुरहानपुर के किसानों ने कमाल किया है। धार में PM मित्रा पार्क का भी बड़ा लाभ हमारे बुरहानपुर के किसानों को और टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा।
1: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक 71.44% मतदान दर्ज किया गया। बारिश के बावजूद कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। इस सीट पर भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। मतदान के दौरान कुछ शिकायतें भी सामने आई जिन पर चुनाव अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई की। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि वन अधिकार कानून को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। वे आज भोपाल में वन अधिकारों से जुड़ी समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांवों की ग्राम सभाओं में सभी काम पारदर्शिता और आपसी सहयोग से किए जाएं। बैठक में बताया गया कि 15 अगस्त को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में लोगों को वन अधिकारों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आराधना के इस पवित्र महीने में प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों और कांवड़ यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। श्रावण मास के पहले दिन उज्जैन, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, महेश्वर, भोजपुर, बड़वानी, कुबेरेश्वर और प्रदेश के अन्य शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचे। रतलाम में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अधिकारियों की बैठक में नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संयुक्त टीमों से नियमित जांच, सड़क पर गश्त बढ़ाने और स्कूल कॉलेज तथा छात्रावासों के आसपास विशेष निगरानी रखने पर जोर दिया गया। वहीं शाजापुर महिला थाने में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के समापन पर महिलाओं को नशे के दुष्प्रभाव और मानव तस्करी से बचाव की जानकारी दी गई। इस बीच बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने भी सोशल मीडिया संदेश में लोगों से नशे से दूर रहने और स्वस्थ सुरक्षित जीवन अपनाने की अपील की।
3: मध्य प्रदेश पुलिस का अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभी चलाया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान है, तो मैं उसका समर्थन करता हूं और युवाओं से ये अपील करना चाहता हूं कि नशे से जितना दूरी हो बना के रखें। नशे की आदत आपके जीवन को, आपके रिश्तों को, आपके परिवार को सब कुछ नष्ट करके रख देती है और जो जीवन कहीं और जा सकता था, सुंदर हो सकता था, खुशहाल हो सकता था, समाज के परिवार के काम आ सकता था, वो तबाह हो जाता। दोस्तों, नशे से दूरी है जरूरी, ख्याल रखना, ये सिर्फ आपके लिए है, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। थैंक यू।
1: भोपाल में आज से AC इलेक्ट्रिक बसों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में 10 ई बसें शहर के 3 प्रमुख मार्गों पर चलाई जा रही हैं। इन बसों का किराया 7 से 40 रुपए रखा गया है, जो सामान्य सिटी बसों के बराबर है। नई बसों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा, CCTV कैमरे, GPS और पैनिक बटन भी लगाए गए हैं। नगर निगम के अनुसार अभी 30 ई बसें शहर में पहुंच चुकी हैं और 15 अगस्त को औपचारिक लोकार्पण के बाद इनका संचालन और बढ़ाया जाएगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांडुना, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर में भारी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी के करंजिया स्थित कबीर चबूतरा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज करमंडल, सिवनी और चकरार नदियों के उद्गम स्थलों पर पूजन कर एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण किया। नीमच जिले के ग्राम जाट में आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। शहडोल के ग्रामीण इलाकों में मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने आज बोरखेड़ी, सलोकी और लालूखेड़ी के मध्य प्रस्तावित होल्डिंग एरिया की भूमि का निरीक्षण किया। शिवपुरी जिले में विभागीय कार्यों में

लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने दो प्राथमिक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजगढ़ जिले के कचनारिया सुल्तानी स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई यानी कल तक तय की गई है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के भोपाल में आयोजित होने वाले 6 माह के निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण के लिए छिंदवाड़ा के पिछड़ा वर्ग के 100 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 20 पात्र छात्रों को आवेदन करने के लिए 10 अगस्त तक की तिथि निर्धारित की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केला उत्पादक किसानों को 107 करोड़ 72 लाख रुपए की राहत राशि जारी की और दतिया विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक हुआ 71.44% मतदान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: Akashvani at 90.
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है. ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है.
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट.
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें.

0: शाम के 7:30 होने वाले हैं। अब चलते हैं लोकप्रिय कृषि पत्रिका कार्यक्रम किसानवाणी की ओर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम, नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, जुलाई का महीना अंतिम दौर में है और ये खरीफ की फसलों के लिए ये महीना जो है बेहद अहम होता है। इस समय खेतों में नमी और हरियाली चरम पर होती है, लेकिन यही वो समय है जब खरपतवार और कीट पतंगे, रोग व्याधियां भी सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। अगर इस महीने का सही प्रबंधन किया जाए और इसके आने वाला जो समय है, अब आज से जैसे कि सावन भी शुरू हो चुका है, तो फसल की पैदावार में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं जुलाई के इस माह में कैसे करें खरपतवार और कीटों का प्रभावी प्रबंधन। खरपतवारों को फसलों का साइलेंट किलर कहा जाए तो गलत नहीं होता है। ये अनचाहे पौधे मिट्टी से पोषक तत्व, पानी, धूप और जगह को स्वयं में सोख लेते हैं, जिससे जो मुख्य फसल है वो कमजोर पड़ जाती है। भारत में अकेले खरपतवारों के कारण ही किसान भाइयों और बहनों को हर साल 91,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो जाता है। धान की फसल जो अभी लगी हुई है इसमें 36,000 करोड़ और गेहूं में 28,000 करोड़ के आसपास, और साथ ही सोयाबीन की फसलें भी हमारे किसान भाइयों और बहनों ने लगाई है, इसमें भी 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान सिर्फ इन्हीं खरपतवारों के कारण ही हो जाता है। ये खरपतवार मिट्टी से 47% नाइट्रोजन, 42% फॉस्फोरस और 50% पोटाश जैसी आवश्यक ताकत खींच लेते हैं। अगर समय पर इन्हें नियंत्रित न किया जाए तो खरीफ की फसलों की पैदावार 15% से 76% तक गिर सकती है। जैसे मूंगफली में 35.8% तक, सोयाबीन में 31.4% और मक्के में 25.3% तक की कमी आ सकती है। खरपतवारों के प्रबंधन करने की जो रणनीति है उसमें जो जानकारी है वो अब जानते हैं। सबसे पहले बात की जाए खरीफ फसल के प्रमुख फसल धान की पैडी की। धान की फसल में जुलाई के पहले पखवाड़े में रोपाई पूरी कर लेनी चाहिए। हमारे अधिकांश किसान भाइयों और बहनों ने कर ही लिया होगा। रासायनिक खरपतवार नाशकों के अलावा निराई गुड़ाई का भी विशेष ध्यान रखना है। पहली निराई 2-3 सप्ताह और दूसरी 4-6 सप्ताह पर करें, अभी बिल्कुल सही समय है। फसल स्थापना के 20-50 दिनों के भीतर खरपतवार सबसे अधिक नुकसान करते हैं, इसलिए इस अवधि में विशेष सतर्कता बरतें। मक्के की अगर बात की जाए तो मक्के की जो फसल है वो मध्य जून से जुलाई के पहले सप्ताह तक बो देनी चाहिए, और हमारे कई किसान भाइयों और बहनों ने कर ही लिया होगा। इसके लिए जो खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ रासायनिक जो दवाएं हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर। हल्की मिट्टी में 400 से 500 ग्राम और भारी मिट्टी में 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो एट्राजीन है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। खरपतवार नाशी का पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। अब बात करते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन की बुआई 20 जून से 5 जुलाई के आसपास हो जानी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन का छिड़काव कर सकते हैं। फसल के 15 से 20 दिनों के बाद जो है इमेजा थापायर का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। अन्य फसलों की बात की जाए जैसे गन्ने में भी आप कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर इन दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं जो खरपतवार नाशी हैं। रसायनों के अलावा जो खरपतवार नियंत्रण के उपाय हैं उनके विषय में जानते हैं। जैसे गहरी जुताई करना, पहले ही हम कई कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि मई जून में खेत की गहरी जुताई करें और कुछ दिन खुला छोड़ दें। तेज धूप से खरपतवारों के बीज और जड़ें जल जाती हैं। फसल चक्र अपनाएं, ये हर साल एक ही फसल न बोएं। फसल चक्र अपनाने से उस फसल के साथ उगने वाले खरपतवारों की संख्या भी घट जाती है। साथ ही स्वच्छ बीज लें, बुआई के लिए हमेशा प्रमाणित और खरपतवार रहित बीजों का उपयोग करें। पकी खाद लें, कच्ची गोबर की खाद न डालें क्योंकि इसमें खरपतवारों के बीज जीवित रहते हैं, इसलिए हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। कीट प्रबंधन करें, जुलाई में सावधानी बेहद जरूरी है। जुलाई में नमी और गर्मी बढ़ने से कीट पतंगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। फसलों को कीटों से बचाने के लिए नियमित निगरानी और समय पर उपचार बेहद जरूरी है।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: तो चला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी था ना। और लो, पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं और चाखा और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: मक्के में अगर बात की जाए तो तना छेदक फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप होता है। फॉल आर्मी वर्म मक्के की पत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। एमामेक्टिन या एनपीवी का छिड़काव कर सकते हैं इसके लिए, और बीज को साइट्रा नीलीप्रोल और थायोमेथोक्साम से उपचारित कर सकते हैं। ट्राइकोग्रामा जैविक एजेंट का भी उपयोग आप कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। सोयाबीन में कीट प्रबंधन के लिए सफेद मक्खी इसमें प्रमुख है, तो 30 से 40 पीला चिपचिपा जाल जो होता है प्रति एकड़ लगा सकते हैं। इसमें जो स्पोडोप्टेरा यानी जो इल्ली होती है, इसका पहला छिड़काव एजाडिरेक्टिन 1500 ppm प्रति एक लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव कर सकते हैं। सब्जियों की अगर बात की जाए तो भिंडी में जैसीड एफिड का और साथ ही थ्रिप्स का प्रकोप होता है। इसके लिए आप इमिडा क्लोप्रीड 70% WG ले सकते हैं, और खीरे में एफिड और जैसीड के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। टमाटर में थ्रिप्स और सफेद मक्खी का आक्रमण होता है, इसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आलू में एफिड और सफेद मक्खी का आक्रमण होता है, इसके लिए भी ये प्रभावी है। गन्ने में मुख्य रूप से प्रारंभिक तना छेदक होता है, इसके लिए क्लोरपाइरीफॉस 20 EC का उपयोग किया जा सकता है। सही मात्रा के उपयोग के लिए आप कृषि विशेषज्ञ की अवश्य सलाह लें। जुलाई के इस महीने में खरपतवार और कीट नियंत्रण के साथ साथ फसलों को समय पर पोषक तत्व देना भी बेहद महत्वपूर्ण है। धान की रोपाई के 3 और 6 सप्ताह बाद 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ डाली जा सकती है। इसके अलावा PAU लीफ कलर चार्ट का उपयोग भी किया जा सकता है। नाइट्रोजन की आवश्यकता का आकलन इससे किया जा सकता है। मक्के की फसल के लिए घुटने की ऊंचाई यानी नॉक हाई अवस्था में नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा डाली जा सकती है। अगर किसी किसान भाइयों के पास कपास है तो फूल आने पर 2% यूरिया और बॉल अवस्था में 2% DAP का पर्णी छिड़काव किया जा सकता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, फफूंद रोगों से बचाव भी बेहद आवश्यक है। जुलाई में नमी के कारण फफूंद रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक अच्छा विकल्प है। ये एक मल्टीसाइट कॉन्टेक्ट फफूंद नाशक है जो फफूंद और जीवाणु कोशिका

में एंजाइम प्रणाली और प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करता है। इसके अलावा आलू में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के लिए भी ये प्रभावी है। साथ ही टमाटर में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और लीफ स्पॉट के लिए भी प्रभावी है। और उसके अलावा आम और नींबू वर्गीय फलों में भी लीफ स्पॉट और कैंकर के लिए भी विशेष उपयोगी है। कुछ विशेष सावधानियां भी हैं किसान भाइयों और बहनों। सबसे पहली बात, जल भराव से बचें। जुलाई में भारी बारिश होती है, इसलिए खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंधन करें। सावन के महीने की भी शुरुआत हो चुकी है। कपास, मक्का और दलहनी फसलें अधिक पानी में खड़ी नहीं रह सकती। दूसरी बात है, समय पर निराई गुड़ाई बेहद आवश्यक है। फसल स्थापना के 20 से 50 दिनों के भीतर खरपतवार सबसे ज्यादा नुकसान करती है, ये बात पहले भी बताई गई है। तो ये पहली निराई 2 से 3 सप्ताह और दूसरी 4 से 6 सप्ताह पर अवश्य करें। इसके अलावा जैविक एजेंटों का उपयोग करना है। तीसरी बात ये है, रासायनिक कीटनाशकों से पहले नीम आधारित उत्पाद जो होते हैं और ट्राइकोग्रामा जैसे जैविक नियंत्रकों का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने कार्यक्रम प्रसारित किए हैं, तो जरूर इन कार्यक्रमों को सुने। इसके अलावा चौथी बात यह है कि फेरोमोन ट्रैप भी होता है, जिसका उपयोग आप कीटों की मौजूदगी की पहचान करने के लिए कर सकते हैं। 2 से 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ आप लगा सकते हैं। सुरक्षा सावधानियां ये हैं कि रासायनिक उत्पादों का उपयोग करते समय दस्ताने, मास्क और सुरक्षात्मक कपड़े पहने और साथ ही जो निर्देशानुसार मात्रा है उसका ही उपयोग करें, अधिक मात्रा में करने से बचें। जुलाई का महीना और ये सावन का महीना खरीफ फसलों की पैदावार तय करने वाला होता है। समय पर और सही तरीके से खरपतवार और कीट प्रबंधन करके आप न केवल फसल को नुकसान से बचा सकते हैं, बल्कि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि भी कर सकते हैं। खेत की नियमित निगरानी, समय पर उपचार और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, ये तीनों मिलकर आपकी खेत को बेहतरीन उपज देंगे। तो किसान भाइयों और बहनों, इस खरीफ के मौसम में, जुलाई और सावन के महीने में अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखें और सावधानियों के साथ खेती करें और आगे बढ़ें।

0: किसान भाइयों और बहनों, आपके लिए कुछ विशेष जानकारी हम अक्सर लेकर आते रहते हैं, तो आज ये जानकारी सुनिए, आइए सुनते हैं।
1: बरसात के मौसम में सब्जी फसलें हैं, उसको संभालना, उसको अच्छे तरीके से रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। लेकिन बरसात के समय में सब्जी वाली जो फसलें हैं, अगर हमारे किसान भाई ये सब्जी की फसलों को लगाते हैं, अच्छे से जो है इसको उत्पादन लेते हैं, तो लाभ भी काफी ज्यादा इनको मिल सकता है, क्योंकि जो मूल्य है वो इस समय काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे ही जो कुछ फसलें हैं उसके बारे में आप आज चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप अभी जाएं सब्जी लेने के लिए, कोई भी सब्जी जो है 40-50 रुपए किलो से नीचे कोई भी नहीं है। फूल गोभी अभी जो है 70-80 रुपए किलो से भी ऊपर बिक रही है, जो ठंड के समय में 20-25 रुपए 30 रुपए तक भी बिकती है। तो ऐसे समय में जो है सब्जी का जो उत्पादन करके जो हमारे किसान भाई हैं बहुत अच्छे से लाभ कमा सकते हैं। तो कुछ जो हमारी प्रमुख सब्जियों की जो फसलें हैं उसके विषय में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फूल गोभी की। अगेती फूल गोभी जो आने वाली जो अग्रिम रूप से जो आ जाती है, जो शुरू में ही आ जाती है, से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं आप। उसके लिए जो प्रमुख किस्म है वो है पूसा हाइब्रिड 2, पूसा दीपाली, काशी क्वारी, अर्ली क्वारी, पूसा कार्तिकी, पूसा अर्ली सिंथेटिक का उपयुक्त समय है। आप रोपाई कर सकते हैं 45 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कर सकते हैं। जल निकास का विशेष रूप से ध्यान रखें किसान। अगर हरी मिर्च की बात की जाए तो जो अगेती हरी मिर्च है यानी अर्ली जो वेराइटी है उसकी जो प्रजाति है पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौर, पूसा ज्वालापंत C1, पंजाब लाल और शंकर किस्में जो है काशी सुर्ख, काशी अगेती, काशी तेज, अर्का मेघना, अर्का हरिता, इसकी रोपाई का भी उपयुक्त समय है। हरी मिर्च में आप 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। रोपाई जो है 45 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। भिंडी की अगर बात की जाए तो भिंडी की उन्नत किस्में हैं जैसे पूसा A1, पूसा A4, पूसा सावनी, परभणी क्रांति, काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी सातधारी, काशी क्रांति और संकर किस्में जैसे काशी भैरव, सारिका, सिजेंटा, 152, महिको 8888, यूएस 7109, S5JK हरिता, ये मुख्य हैं। बुआई के लिए बीज दर आपको लेनी है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई की दूरी 60 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर करनी है। समय जो है ये जून जुलाई के आसपास का ही समय खरीफ फसल के लिए सही है। उर्वरक 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास आप प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। यदि गोबर की खाद उपलब्ध है आपके पास तो 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। आटा यानी बैगन की अगर बात की जाए तो ये गर्म और वर्षा ऋतु की फसल है जो पाले को सहन नहीं कर सकती है। इसकी खेती के लिए 6 से 7 पीएच यानी कि हल्की सी जो अम्लीय मृदा है वो उपयुक्त होती है। बलुई दोमट अच्छी जल निकासी वाली जो मृदा है, मिट्टी है, ये उपयुक्त होती है। अर्ली वेरायटी जो बैगन की जो है अगेती बैगन, उसकी जो उन्नत प्रजाति है पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा बिंदु, पूसा कौशल, पूसा श्यामला, पूसा अंकुर, गोल बैगन की जो उन्नत प्रजाति है पूसा उत्तम, काशी संदेश और पंत ऋतुराज, रामनगर जायंट, ये प्रमुख है। अच्छी जमाव वाली जो क्षमता है 400 ग्राम और 250 से 300 ग्राम संकर किस्मों का जो बीज है वो जो है आप प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। ये बैगन की जो नर्सरी है जुलाई में लगाने से अक्टूबर में जो है सब्जी मिलने लगेगी। रोपाई 75 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। खेत की तैयारी के समय 25 टन प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम ही पोटास लगता है। 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आधी मात्रा मिट्टी में मिला दें और बाकी आधी नाइट्रोजन की मात्रा को फूल आने तक प्रयोग करें। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन नामक जो खरपतवार नाशी है उसकी 3 लीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से और पौध रोपाई के उसके आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती है ये सब्जियां। जून के अंत से जुलाई के समय जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। खेत में लगभग जो 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना ले। बुआई से पहले नालियों में पानी भर दें और जब नाली में नमी की मात्रा बुआई जो बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी जो भुरभुरी करके बीज बोएं। लौकी जो है प्रमुख कद्दू वर्गीय फसल है, उसकी जो उन्नत प्रजाति है ये है पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि, पूसा हाइब्रिड, तीन काशी गंगा और अरका बहार प्रमुख है। लौकी की जो बीज दर लेनी है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। लौकी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 0.5 मीटर पर बुआई करनी है। कद्दू की अगर बात की जाए तो इसकी प्रमुख प्रजाति है पूसा पसंद, पूसा अलंकार, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन और पैटी पैन ये प्रमुख है कि जो बीज दर है ये भी 5 से 6 किलोग्राम आप ले सकते हैं प्रति हेक्टेयर। और कुछ अन्य कद्दू की जो वैरायटी है वो है पूसा विश्वास, पूसा विकास, पूसा हाइब्रिड 1, अरका चंदन, काशी हरित और पूसा। ये जो कद्दू की जो बीज दर है वो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। तोरई जो है चिकनी तोरई जो यानी कि जो गिलकी है हमारे क्षेत्र में रेरुआ बोला जाता है ये उन्नत प्रजाति जैसे पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, काशी दिव्या, पूसा सुप्रिया और धारीदार तरोई जो तरोई होती है उसकी जो उन्नत प्रजाति है वो पूसा नूतन, अरका सुजात, सतपुतिया, अरका सुमित और पूसा नसदार प्रमुख है। तोरई की जो बीज दर है वो 5 से 5.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है और इसकी बुआई जो है 2.5 मीटर से 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर की जा सकती है। करेले की बात की जाए तो करेला जो है कड़वा जरूर होता है लेकिन हमारे किसान भाइयों को समृद्ध कर सकता है, उनके जीवन में मिठास घोल सकता है। करेले की जो पूसा दो मौसमी और पूसा विशेष किस्में जो है जुलाई के पहले सप्ताह में लगाई जाती है, इसमें जो है 3 किलोग्राम बीज आप ले सकते हैं। 12 से 20 घंटे तक आपको भिगो के रखना है। 1.7 फीट चौड़ी लगभग जो है 1.5 से 2 फीट चौड़ी नाली के दोनों तरफ बुआई करें। नालियों की जो आपसी दूरी 6 फीट रखें। 10 टन देसी खाद आप डाल सकते हैं और आधा बोरा यूरिया भी डाल सकते हैं और 1.5 बोरा सिंगल सुपर फॉस्फेट और आधा बोरा जो है म्यूरेट ऑफ पोटास या जो है आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला सकते हैं। बिजाई के समय कीटों की रोकथाम करने के लिए फ्यूरोडॉन जो है मिट्टी में मिला दें। इसके 60 से 70 दिनों में 600 से 700 किलोग्राम पैदावार भी मिल सकती है करेले की। जैसा मैंने पहले ही बताया कि बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है और करेला जो है बेशक कड़वा है लेकिन हमारे जीवन में, हमारे किसान भाइयों के जीवन में मिठास घोल सकता है। बात करें टिंडे की, टिंडा जो है इसका जो उन्नत प्रजाति पूसा रौनक, पंजाब टिंडा, अरका टिंडा, टिंडे के लिए बीज दर 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। सलाद के लिए जो है बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है वो है खीरा। खीरे की जो उन्नत प्रजाति है वो है जापानी लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेटे पूसा उदय, पूसा बरखा, पॉइंसेट और पूसा संयोग। खीरे की जो बुआई है बीज दर 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर रखी जा सकती है। पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 से 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक और फसल है, बहुत स्वादिष्ट भी होता है और आप चाहें तो कुंदरू आलू भी बना सकते हैं, कुंदरू चना भी बना सकते हैं और बहुत ही ज्यादा जो है इसका आनंद उठा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं कुंदरू की। इसकी रोपाई के लिए ये उपयुक्त तो समय है। कुंदरू में नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। इसकी अच्छी उपज लेने के लिए 10 मादा पौधे और 1 नर पौधा अवश्य लगाएं। ग्रीष्म ऋतु में क्या करना है, 3 मीटर की दूरी 30x30x30 आकार के जो गड्ढे खोदे जाने हैं और फिर 3 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, नाडिप खाद, 50 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सुपरफॉस्फेट, 100 ग्राम पोटास प्रति गड्ढे की दर से अच्छी तरीके से मिलानी है। मिट्टी और बालू का जो मिश्रण है उसको मिला देना है 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक भर देना है और वर्षा प्रारंभ होते ही कलिका युक्त जो विकसित कलम है इस गड्ढों में रोप देना चाहिए। और कद्दू के बाद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है जो भी जो हमारे किसान भाइयों की जो आय है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि कर सकता है और उसका नाम है रखिया, उसको पेठा भी बोलते हैं हमारे किसान भाई। पेठे या रखिया की जो उन्नत प्रजाति है पूसा श्रेयाली, पूसा उर्मी, पूसा उज्जवल, काशी धवल, काशी उज्जवल, काशी सुरभि प्रमुख है। पेठे के जो बीज दर है वो भी 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। कद्दू वर्ग की सब्जियों में बुआई के लगभग 25 से 30 दिनों बाद पौधों की बढ़वार के समय प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। जून में बोई गई जो कद्दू वर्ग की सब्जियों को मचान बनाकर सहारा देना है। उचित जल निकास की भी व्यवस्था करनी है। सड़ ना जाए जड़ जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है तो फिर जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। कद्दू वर्ग की सब्जियों में बुआई के लगभग 25 से 30 दिनों बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करनी है। खरीफ में जो हमारे किसान भाई प्याज लगाते हैं तो खरीफ की प्याज के लिए पौधशाला में बीज की बुआई 10 जुलाई तक कर दें। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए जो 12 से 15 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और शहडोल जो है हल्दी के लिए जाना जाता है और हल्दी की अगर बात न की जाए तो फिर बेमानी साबित होगी। हल्दी में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बुआई के 35 से 40 दिनों के बाद पंक्तियों के बीच आप प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे ही जड़ वाली जो फसल है अदरक, अदरक में बुआई के 40 दिनों के बाद प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन मिट्टी चढ़ाते समय अवश्य दे दें। और जिमीकंद जो है ये इसकी फसल जिसको सूरन भी कहा जाता है बहुत महत्वपूर्ण फसल है, ये भी अच्छे से जो है उत्पादन हो सकता है इसका और अच्छे से लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान भाई। के लिए क्या करना है, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 65 से 70 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग करनी है। चौलाई जो एक भाजी होती है बरसात वाली जो चौलाई है उसकी बुआई पूरे महीने की जा सकती है, इसके लिए 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। तो सब्जी वाली जो फसल है वो हमारे किसान भाइयों के लिए उनके आय बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जो सब्जियों की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा होती है और अगर मूल्य अगर बढ़ा हुआ है तो हमारे किसान भाइयों को अच्छी आय मिलेगी, अच्छी का जो उत्पादन जो भी है उसमें उनको मूल्य मिलेगा और मूल्य अगर उन्हें मिलता है तो फिर आय में वृद्धि तो होगी ही और साथ ही ये आय में वृद्धि लाएगी समृद्धि खुशहाली। और ऐसे ही कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हमारे किसान भाई और बहन खुशहाल रहें समृद्ध रहें। ऐसे ही जानकारियों के लिए सुनते रहिए किसानवाड़ी कार्यक्रम और साथ ही साथ जो किसान भाई किसानवाड़ी कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं किसी कारण से तो फिर वो YouTube में भी आप जाकर सर्च करके आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं, फिर कोई भी जानकारी आपसे बची नहीं रह जाएगी और छूटेगी भी नहीं। बहुत ही ज्यादा जो उम्दा जानकारियों के साथ हम कोशिश करते हैं कि अपने किसान भाई के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा बेहतर जानकारियां जो है लेकर आ सकें और साथ ही साथ समय समय पर आपको विशेषज्ञों की भी जो राय है जरूर देते हैं। तो किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनते रहिए और इसी प्रकार जो है अपना प्यार हमारे कार्यक्रम में बनाए रखिए। आज के लिए यहीं तक।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।
0: किसान भाइयों और बहनों किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इसके प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रात्रि के 8 बजने वाले हैं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहां शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है। ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान है। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाई। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लिखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई, तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष SIT का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं। ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए अन्यथा यही जेंजी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, BRS के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के बढ़ते निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अजय सहाय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं मनोज पाठक और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बीच भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और मजबूत हम कैसे बना सकते हैं। गौरतलब है कि देश के वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2026 की मासिक आर्थिक समीक्षा जारी की और इसमें एक अच्छी खबर दी कि पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक संघर्षों के बाद भी भारत ने अपने आयात स्रोतों और निर्यात गंतव्यों में विविधता लाकर अपने बाहरी व्यापार को लचीला बनाए रखा है और 2025-26 वित्त वर्ष के दौरान हमने रिकॉर्ड निर्यात किया जो $863.1 बिलियन से ऊपर पहुंच गया। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम कैसे अपने निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं और वैश्विक स्तर पर जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार को निरंतर बढ़ाए रख सकते हैं। इस विषय पर हमने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है जाने माने विशेषज्ञ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल और CEO डॉक्टर अजय सहाय जी को। डॉक्टर सहाय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम यही समझना चाहेंगे कि हमारे सामने जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिसमें जगह जगह मार्ग रुक रहे हैं, एक ओर, दूसरी ओर ऊर्जा का जो संकट है उससे निकलने के समाधान ढूंढे जा रहे हैं, जगह जगह रूट्स बंद हो जा रहे हैं, उसमें हमारे लिए कैसी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं?
3: जैसा आपने बताया है कि जितनी चुनौतियां हैं उसके बाद भी अगर आप भारत के निर्यात को देखिए तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। $863 बिलियन का हमने पिछले वर्ष में निर्यात किया था और जबकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में आ गए, मिडिल ईस्ट की बहुत सी इकोनॉमी इंपैक्ट हुई है, उसके बाद भी अगर हम फर्स्ट क्वार्टर 2026-27 का देखें तो हमारा अप्रैल से जून जो एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, वो 15% बढ़ा है और ये बहुत ही सकारात्मक दिखता है और ये शो करता है कि जो भारतीय जो निर्यात है उसकी प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण ये है कि हमारा जो निर्यात है उसमें काफी विविधीकरण आ गया है, चाहे हम प्रोडक्ट की बात करें चाहे हम देशों की बात करें, दोनों में काफी विविधीकरण आ गया है। गवर्नमेंट ने जिस तरह का एक प्रोएक्टिव पॉलिसी का सपोर्ट दिया है उससे भी जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। और अगर हम पूरे एक्सपोर्ट्स को देखें तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो हमारे जिनको हम कह सकते हैं जो हमारे सनराइज सेक्टर्स हैं, जिसमें मैं कहना चाहूंगा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, ऑटोमोबाइल है, इन सेक्टर्स में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और शायद जो हमारे पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस है वो हमें काफी मदद भी कर रही है। दूसरी चीज, बहुत सी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपना बेस कर रही हैं। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनका जो हमें फायदा मिल रहा, ना खाली ट्रेड में मिल रहा बल्कि हमारे इन्वेस्टमेंट में भी वो हमें उसका फायदा मिल रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल सेक्टर्स की बात करें तो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में जैसे एग्रो एंड फूड सेक्टर है, मैरीन सेक्टर है, अपैरल टेक्सटाइल है, फुटवेयर सेक्टर है, कार्पेट्स है, हैंडीक्राफ्ट है, इन सेक्टर्स में भी इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। जबकि इस सेक्टरों में जो प्रतिस्पर्धा है वो ज्यादा हो गई है, बहुत से कंट्री जो है जो लो कॉस्ट इकोनॉमी है वो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन फिर भी हम इस प्रतिस्पर्धा में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट का जो फोकस था वो पहले दिन कुछ सालों में हमेशा यूरोप और यूएस के ऊपर रहा है। यूएस अभी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मार्केट है, 18% अपने एक्सपोर्ट का

0: यूएस को एक भेजते हैं, लेकिन ईयू और की जगह हमारे आसियान कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, नॉर्थ ईस्ट एशिया है, ये हमारे लिए मार्केट बहुत बड़े होके आए हुए हैं और इन मार्केट में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। इसी चीज जो बहुत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं उसका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आया है। जो नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, चाहे पीएलआई स्कीम की बात करें या और हम प्लग इन प्ले के लिए जो स्कीम्स इंडस्ट्रियल पार्क में आ रही, वो भी इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ाने में बहुत मददगार होंगी, कि क्योंकि जो कंपनीज है वो इंडिया को अपना बेस बना रही है और इंडियन कंपनीज भी अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जा रही है।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, आपने चर्चा की बाजारों का विविधीकरण हो रहा है, साथ ही निर्यात के जो नए ठिकाने हैं वो बन रहे हैं, इसे थोड़ा और स्पष्ट करें और यदि संभव हो तो कुछ उदाहरण देकर बताएं कि कहाँ हमारा निर्यात पहुँच रहा है और कौन सी वस्तुओं का निर्यात वहाँ पहुँचने लगा है जो हमारे पारंपरिक यू और अमरीका जो दो मुख्य ठिकाने रहे हैं उनके अतिरिक्त।
0: देखिए, जैसे हिंदी में कहा जाता है चुनौती में अवसर होते
1: हैं, आपदा में अवसर की बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं,
0: बात करते हैं और वो एकदम सही है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% की ड्यूटी लगाई तो हमारा जो मैरीन जो एक्सपोर्ट था वो बहुत बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि इक्वाडोर जो हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था उसके ऊपर 5% ड्यूटी थी, मेक्सिको जो दूसरा कॉम्पिटिटर था उसके ऊपर 0% ड्यूटी थी और हमारा जो मैरीन एक्सपोर्ट है उसका करीब 35% एक्सपोर्ट जो था वो यूएस के लिए था। जब ये आया तो हम लोगों ने बहुत चिंता जताई कि ये इंडिया का मैरीन एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा, लेकिन हम सब लोग अचंभित रहे जब हम लोगों ने देखा कि हमारे जो मैरीन एक्सपोर्टर्स है उन्होंने बहुत जल्दी ईयू, चाइना और रशिया में अपने को बड़े अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया और इसका ये रिजल्ट रहा कि अगर 25-26 के हम एक्सपोर्ट देखें जहां हमारा एक्सपोर्ट यूएस के लिए प्रभावित हुआ था, हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो करीब करीब 15% मैरीन एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ऐसे और भी क्षेत्र हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि इंडिया की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और उस प्रतिस्पर्धा बढ़ने से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तीसरी बात है कि एक ग्रोइंग रियलाइजेशन इंडस्ट्री में आ रहा है कि एक्सपोर्ट आपको स्केल प्रोवाइड करने के लिए और आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए, आपको डिस करने के लिए बहुत अधिक मदद करता है। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब रेड सी की क्राइसिस हुई तो ये हुआ कि जो भी हमारा सेरेमिक का जो भी उद्योग है वो बुरी तरह प्रभावित होगा, लेकिन जब हम लोगों ने खोजा का अध्ययन किया तो हम लोगों ने फाइन की जो भी इंडस्ट्री थी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट की ओर चली गई थी, लेकिन जब रेड सी की प्रॉब्लम खत्म हुई वो फिर वापस एक्सपोर्ट में चले गए। तो शायद इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास इतना बढ़िया वाइब्रेंट डोमेस्टिक मार्केट है कि हम इस तरह प्ले कर सकते हैं। ये तरह का ऐसी जो सुविधा है वो बाकी कंट्री को नहीं है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के पास ऐसी सुविधा नहीं है।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, आपने कहा कि जो वैश्विक कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत को अपना बेस बना रही हैं और हमारे यहाँ से उत्पाद अन्य देशों को जा रहा है, तो ऐसे कुछ क्षेत्र जहां भारत में इनका अच्छा आधार बन गया और निर्यात हमारा अब अच्छी तरह हो रहा है, उन्हें थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह ये लाभान्वित कर रहे हैं और उनके समक्ष क्या चुनौतियां वर्तमान स्थिति को देखते हुए आ रही है।
0: देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका स्मार्टफोन है। अब देखिए, अगर इंडिया के 2015-16 के डाटा देखिए तो हम करीब करीब जो हमारा 24 से 25 बिलियन डॉलर इंपोर्ट रहता था स्मार्टफोन्स और मोबाइल फोन का, आज की डेट पे हम नेट एक्सपोर्टर मोबाइल सेक्टर में आ गए हैं। बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज ने इंडिया को बेस बना दिया और इंडिया का जो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया के ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इनफैक्ट कुछ बात कर रहा था मैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल है, वो जिसका जो उनका एक्सपोर्ट का प्लान है तो उसके प्लान के लिए शायद जो साउथ के जितने भी एयरपोर्ट हैं, चेन्नई की बात करें, बैंगलोर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो जो कैपेसिटी है वो भी उनको ही नहीं डील कर पाएगी और देयर आर नंबर ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स आल्सो। ऐसे अगर हम बात करें टेक्सटाइल के क्षेत्र में, जो ग्लोबल कंपनीज है वो इंडिया से इंक्रीजिंगली प्रोक्योरमेंट कर रही है और एक तरह का जो सप्लाई चेन उनको चाहिए वो इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया है। एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि यूएस ने इतनी जब टैरिफ भी इंडिया पे लगाई थी 50% टैरिफ अपैरल सेक्टर में, एक्सपोर्ट नहीं प्रभावित हुआ, इसका बहुत बड़ा कारण था कि ग्लोबल कंपनीज इंडिया में जो उन्होंने अपनी सप्लाई चेन एस्टैब्लिश कर ली थी उसको वो बदलना नहीं चाहती थी। तो शायद अब कंपनीज का एक परमानेंट स्टेक इंडिया में आ गया है क्योंकि इंडिया को एक्सपेंशन में उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत प्रोएक्टिव हो गई और एक बहुत अच्छी बात हुई कि उनमें भी एक तरह से होड़ लगी है एक्सपोर्ट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पाने के लिए। लॉन्ग टर्म हम रोड मैप जब हम एक्सपोर्ट का देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी है वो एक्सपोर्ट की तरफ मुड़ रही है, वो एक्सपोर्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। जो ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आ रही है वो इंडिया को एक बेस बना रही है, ना खाली इंडिया में सप्लाई करने के लिए बट वो ग्लोबल हब इंडिया को बनाना चाहती है पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करने के लिए।
1: यहाँ पर आपने चर्चा की सनराइज सेक्टर की और साथ ही पारंपरिक की, तो पारंपरिक क्षेत्र जिसमें कह लें कि कुटीर उद्योग यानी जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके लिए भी अवसर बनता है, उसके अलावा जो मझोले हैं एसएमएसएमईज हैं उनके लिए अवसर बनता है, उनका क्या भविष्य नजर आ रहा और उनके सामने चुनौतियां क्या देख रही और उसका समाधान सरकार के स्तर पर क्या ढूंढा जा रहा?
0: देखिए जहां तक आप हमारे कुटीर उद्योगों की बात कीजिए या जो हमारे ट्रेडिशनल उद्योगों की बात कीजिए उनके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं उन एग्रीमेंट पे इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि हम बात करें, अगर हम यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बात करें और हम टेक्सटाइल और फुटवेयर सेक्टर को लेके रखें तो इनमें बहुत हाई ड्यूटी है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें वहां पे भी टेक्सटाइल और फुटवेयर में बहुत ज्यादा हाई ड्यूटी है। हम अभी भी उन मार्केट में हैं और अगर हमें टैरिफ का एडवांटेज मिलता है तो इन सेक्टर में हम अपना एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जहां हम अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को देख रहे हैं हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स एक्सपोर्ट्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो हमारे हैं उनके ऊपर उन मार्केट में ड्यूटी बहुत ज्यादा है। अगर मान लें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो शायद यूके और ईयू में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे 5% ड्यूटी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल की तो 16-20% ड्यूटी हो सकती है, फुटवेयर में 10-20% ड्यूटी हो सकती है। तो जो मार्जिन टैरिफ का एडवांटेज है वो इन मार्केट में इनको बहुत ज्यादा मिलेगा। जहां तक चुनौतियां हैं तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हम जो न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो एडवांस इकोनॉमीज के साथ कर रहे हैं और मार्केट एक्सेस इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड मूव कर रहा है अब ट्रेसिबिलिटी और सर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए हैं एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी के लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपको टैरिफ का बेनिफिट मिलता है लेकिन वो बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके पास मार्केट एक्सेस होगा। तो ये मार्केट एक्सेस जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे हम बात करें कि अभी यूरोपियन यूनियन में इको सस्टेनेबल प्रोडक्ट रिजीम आ रही है, यूरोपियन यूनियन में EUDR का रेगुलेशन आया है, तो ये जितने रेगुलेशन आ रहे हैं वो कंप्लायंस कॉस्ट इंडस्ट्री की बढ़ा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इन चैलेंजेस को पहले से ही देख लिया है, उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में एक ट्रेस की स्कीम लाई है जिसमें टोटल जो सर्टिफिकेशन और जो कंप्लायंस कॉस्ट है उसमें माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को 95% जो कॉस्ट है वो रीइंबर्स हो रही है और हर इंडस्ट्री को हर साल 50 लाख तक का ये सपोर्ट मिलेगा। जो हमारी मीडियम इंडस्ट्री है उनको 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन टेस्टिंग रीइंबर्स हो रही है 50 लाख की सीलिंग से। तो ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट दिया हुआ है जो हमारे छोटे एक्सपोर्टर हैं, जो मझोले एक्सपोर्टर हैं, उनको इस सपोर्ट को लेना चाहिए और नए तरह के जो भी सर्टिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है उससे अपने को इक्विप करना चाहिए।
1: जो छोटे कहले निर्यातक है जिनका कारोबार अपेक्षाकृत छोटा है वह कैसे इस प्रमाणन को प्राप्त कर सकते हैं और पूरा लाभ अपने उत्पाद का ले सकते हैं?
0: देखिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर मैं फल का एक एक्सपोर्ट करता हूँ US में तो उसके लिए मेरे को एक FDA का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, उस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक तरह से उदाहरण देना चाहूंगा, मान लीजिए सर्टिफिकेशन की कॉस्ट 20 लाख रुपए है और मैं एक लघु उद्योग का एक एक्सपोर्टर हूँ, मेरे लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट हमें 95% जो 20 लाख का है वो वापस करती है, मतलब हमारे पास 19 लाख रुपए जो 20 लाख रुपए आपने खर्च किए 19 लाख रुपए वो सरकार आपको वापस दे रही है। सरकार का पूरा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये सर्टिफिकेट लें और अपने को एक्सपोर्ट मार्केट में एस्टैब्लिश करें। तो ये सरकार को मानना है कि ये सर्टिफिकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इमीडिएटली इस तरह का सपोर्ट दिया गया है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इंडिया के जितने नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखेंगे उसमें हमने MRA म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट की बात की है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो लैब है वो भी रिकॉग्नाइज्ड हो। तो अगर हमारी लैब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होने लगेंगी, इंपोर्टिंग कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड होने लगेंगी तो वही सर्टिफिकेशन बहुत कम दाम पे हमें इंडिया में ही अवेलेबल होगा। और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं उसका ये फायदा ले।
1: श्रोताओं की ओर से डॉक्टर सहाय आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के बढ़ते निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अजय सहाय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में गीत फिल्म वीर जारा सी। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है संजीव कोहली और मदन मोहन ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं। अनिल पांडे के लिखे इस गीत को संगीत दिया है संदेश शांडिल्य ने।

0: श्रोताओं, फिल्म कभी खुशी कभी गम के ऐसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। श्रोताओं, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की यह सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
3: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
2: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
4: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
2: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
6: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
7: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
2: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
9: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तान

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए दूर संचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दूर संचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: राकेश भटनागर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: राकेश जी। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन चुका है और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक तरह से मेरुदंड भी माना जाता है। तो ऐसे में अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? क्या ये केवल मोबाइल और इंटरनेट का ही विस्तार है या इससे कहीं अधिक सूचना प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है?
2: जो एक सेगमेंट जिसमें की बहुत ज्यादा चेंज हुआ वो मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। पहले जो है मोबाइल फोन जो था मोस्टली इंपोर्ट होते थे। अब इंडिया इस पोजीशन में पहुंच गया है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट को भी मीट कर पा रहा है, उसके साथ साथ में विदेश में भी काफी हद तक एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर एक सिंगल कंपोनेंट को हम लेके चले तो मोबाइल हैंडसेट एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो रहा है जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को और काफी उससे योगदान मिल रहा है। इसमें बस एक चीज की कमी है कि जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो अभी बहुत हाई लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो हमको कुछ आइटम्स जो है कंपोनेंट्स वगैरह है उस फिर भी अभी हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में भी जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं उसके रिजल्ट्स आएंगे और लोकल वैल्यू एडिशन भी जो है काफी हद तक बढ़ पाएगा।
1: भटनागर जी, जैसे भी आपने मोबाइल क्षेत्र की बात की तो भारत को मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है और अभी हमारा जो फोकस एक तरह से देखा जाए टेलीकॉम के उपकरणों के निर्माण पर है। और डिस्प्ले की बात करते हैं, हम फैब की बात करते हैं, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की सफलता को जिस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं तो अभी क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और उन्हें आगे चल करके देश को काफी सफलता मिलेगी?
2: देखिए मैन्युफैक्चरिंग का जहां तक है अभी आज की डेट में भी टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जो है काफी हद तक लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर्स एयरटेल जियो वगैरह को अगर आप देखें तो विदेश से ही सामान मंगवा रहे हैं। टेलीकॉम सेगमेंट में चाइना से भी जो लेवल ऑफ इम्पोर्ट है वो अभी तक काफी है। ऐसा नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास में उसको करने की क्षमता नहीं है। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं तेजस नेटवर्क HFCL जो 60-70 कंट्रीज को इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी भी उनके पास में है, उनके पास प्राइसिंग भी वो कॉम्पिटिटिव है। तो सरकार की ओर से थोड़ा एडिशनल प्रयास करने की जरूरत है मार्केट एक्सेस, क्योंकि जब तक इनको डोमेस्टिक प्लेयर्स को ऑर्डर नहीं मिलते तब तक जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम रह जाती है। तो इसमें काफी क्षमता है और सरकार जो है मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्केट एक्सेस के ऊपर भी सरकार की तरफ से आने वाले कुछ हफ्तों में अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे।
1: जी, एक समय था जब भारत टेलीकॉम उपकरणों के लिए काफी हद तक आयात पर भी निर्भर था, जैसा कि आपने जिक्र किया, और सरकार अब घरेलू निर्माण पर काफी जोर दे रही है। तो इसके लिए सरकार ने भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज 1 की शुरुआत की है। तो ये किस तरह की परियोजना है, इसके पीछे की असली सोच क्या है और हमारे टेलीकॉम सेक्टर में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा इसके क्रियान्वित होने के बाद?
2: ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। ग्वालियर शहर में 70 एकड़ लैंड और ग्वालियर से करीब 15 किलोमीटर दूर वहां पर करीब 100 एकड़ लैंड का प्रोविजन किया गया है। ये फेज 1 में है, इसके आने वाले फेज में और भी बढ़ने की क्षमता है। ग्वालियर सिटी में जो 70 एकड़ एरिया है उसमें जो है वहां पर शेड्स वगैरह भी लगाए जाएंगे। जो लागत होगी वो कंपनीज को उसको प्रोक्योर करने की लागत भी बहुत नॉमिनल होगी। उनके पास वहां पर टेलीकॉम टेस्टिंग इको सिस्टम भी वहां पर लगाया जाएगा, टेलीकॉम सेंटर्स भी लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ में जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी काफी योगदान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है अलोंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑलरेडी फील्ड विजिट्स में मैं भी ग्वालियर और भोपाल में एक विजिट में ऑलरेडी जा चुका हूं। इंडस्ट्री के लोग जो है ज्यादा मीटिंग्स में भी जा चुके हैं और इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेशन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोविजन किया है कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो है अच्छे से अच्छे इंसेंटिव जो दिए जा सकते हैं वो दिए जाए। कई सरकारों ने भी सिमिलर जोन स्थापित करने का प्रयास किए लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो ये प्रयास है वो उन सब में एक अलग है और मेरे को काफी उम्मीद है कि इसकी सफलता जरूर आनी चाहिए।
1: राकेश जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी है बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत का लक्ष्य अब केवल घरेलू जरूरतें पूरी करना नहीं बल्कि टेलीकॉम उपकरणों का निर्यातक बनना भी है। तो ये जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज वन की शुरुआत की जा रही है, तो इससे आगे चल करके किस तरह के सुधार हमें देखने को मिलेंगे, क्या निवेश इसमें बढ़ेगा या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जो है वो बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है?
2: टेलीकॉम क्षेत्र में जो है अगर आप देखें तो 5G और 6G में इंडिया का बहुत अच्छा रोल जा रहा है। दुनिया भर में 5G में नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, ZTE एंड हुआई खाली 5 प्लेयर्स हैं, लेकिन इंडिया में जो है करीब 10 से 15 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस ग्लोबल मार्केट में जाने में सक्षम है। ऑलरेडी BSNL MTNL के नेटवर्क में गैलो

0: माइक्रो और लेखा वायरलेस दो इन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट कर दिया है. मे बी 15 अगस्त को दिल्ली में 5G जो है इन लोगों के माध्यम से वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए. प्राइवेट 5G एक बहुत बड़ी मार्केट है, करीब 10,000 करोड़ की मार्केट है, एनुअल मार्केट. तो इसमें जो है इंडिया के प्लेयर्स को क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला था और अब मौका मिलना शुरू हो रहा है. मंत्री जी का भी प्रयास है कि इसके लिए स्पेक्ट्रम का भी अलॉटमेंट वगैरह उस दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं. तो अब इसमें अगर सफलता मिलती है तो हम एक 10,000 करोड़ की मार्केट में हम इंडियन मार्केट में एंटर कर पाएंगे. हमने 77 यूज केसेस आइडेंटिफाई करके सरकार को अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लिए आइडेंटिफाई करके हमने पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट के लिए हमने शेयर किए हैं सरकार के साथ में
1: जी.
0: और ये सारे प्रयास हैं वो खाली इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ये विदेश के लिए भी एप्लीकेबल है. अभी इंडिया ने रिसेंटली जो है अगर लास्ट वीक में ही पहला समृद्ध गांव का अवार्ड WIS ने जीता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है. मैं वॉइस का डायरेक्टर जनरल हूँ, वॉइस ने भी पहला इंडिया का स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज ITU की रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट किया. ऑलरेडी हमारे पास यूरोपियन यूनियन UK और कई जगहों से रिक्वेस्ट आ रही है क्या इंडिया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है. तो नेशनल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है
1: जी.
0: एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा
1: जरूर.
0: कल ही दीनदयाल उपाध्याय संचार अवार्ड जो है अनाउंस किए गए, उसमें एक अवार्ड फिनारा को जा रहा है. मैं इसके बारे में जस्ट बहुत संक्षेप में मेंशन करूंगा. अगर आप विजुलाइज करिए कि आपके पास एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूनिट जो है आपकी एयरपोर्ट पे लगी हुई है, उसमें आप जाके अपना पासपोर्ट उसमें डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना पैन कार्ड दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना आधार कार्ड दीजिए, तीन स्टेप के और की ऑथेंटिकेशन के साथ में आपका KYC कंप्लीट हो जाता है. उस स्टेज में आप कहते हैं कि मेरे को रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, 10,000 rupees आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू डॉलर. तो ये मशीन जो है आपको डॉलर में भी कन्वर्ट करके दे देगी. और अगर आप डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. तो हर एयरपोर्ट में, अब ये दिल्ली का एयरपोर्ट हो, बॉम्बे का एयरपोर्ट हो, लंदन का एयरपोर्ट हो या पेरिस का एयरपोर्ट हो, तो सब जगह पे कन्वर्शन सेंटर्स लगे होते हैं कि आप मैनुअल एक्सचेंज कर सकते हैं. नई सुविधा जो है ये हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने ये डेवलप करी है. तो इंडिया में ये जस्ट एक एग्जांपल है. तो इंडिया में इस तरह करने की बहुत क्षमताएं हैं और उन क्षमता के बेसिस में जो है वर्ल्ड मार्केट में इंडिया का जो रोल है अभी तक जो कंपैरेटिवली पीछे रहा है वो काफी आगे बढ़ सकता है.
1: इस दिशा में अगर थोड़ी सी बात और हम करते हैं तो 6G टेक्निक पर भी भारत काफी काम कर रहा है और भारत का फोकस शुरुआत में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6G में हम वैश्विक नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए.
0: इंडिया में हमारे पास भारत 6G अलायंस है, इसमें जो है डोमेस्टिक जितने भी प्लेयर्स हैं जो R&D कर रहे हैं वो ज्यादातर प्लेयर्स इसके साथ जुड़े हैं, वो इंडस्ट्री के से भी हैं, एकेडमिया से भी हैं और नए पेटेंट्स के लिए भी काम शुरू हो गया है. कुछ पेमेंट रेगुलर इसकी मीटिंग्स भी हो रही हैं और कई कंट्रीज के साथ में MOU भी साइन हो चुका है. करीब 6-7 कंट्रीज के साथ में इसमें इंडिया ज्वाइंटली वर्क कर रहा है
1: जी.
0: UK इंडिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के साथ में वर्क चल रहा है, US के साथ भी वर्क चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी साझा वर्क चल रहा है, जापान के साथ भी वर्क चल रहा है और इंडस्ट्री जो है रेगुलरली जो है इसमें काफी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रही है. और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इंडिया जो है 6G में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर के आए. पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी 4G तक की जो टेक्नोलॉजी थी, इंडिया ग्लोबल लीडर नहीं बन पाया था. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में 5G में भी करीब हमारे पास 10-12 प्लेयर सक्षम हैं जो कि ग्लोबल 5 प्लेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं
1: जी. राकेश जी, अभी आपने वैश्विक नेतृत्व की बात कही, ग्लोबल लेवल पर जो भी हम कर सकते हैं उसकी बात की, थोड़ा सा अपने देश में वापस आते हैं, गांव की हम बात करते हैं. तो भारत नेट जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है और इस योजना ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है. अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देख करके आपको क्या लगता है कि भारत की और कितनी ज्यादा संभावना है, खासतौर पर 5G और 6G को लेकर के जब हम गांव-गांव तक पहुंचने की बात करते हैं?
0: इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. ITU की एक रिकमेंडेशन आई थी Y4218
1: जी.
0: आपने स्मार्ट सिटीज का तो सबने सुना हुआ था लेकिन स्मार्ट विलेजेस का नाम शायद आपने कंपैरेटिवली नहीं सुना होगा. ये रिकमेंडेशन स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेजेस के बारे में इसमें रेफरेंस था और हमने इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज सतनावरी में हमने इंस्टॉल किया. इसमें सेटेलाइट सुविधा भी गांव में पहुंच रही है, 5G प्राइवेट नेटवर्क भी हम यूज कर रहे हैं, भारत नेट की बैंडविड्थ भी हम इसमें यूज कर रहे हैं. तो मीडिया की जो जो ऑप्शन हो सकती है कि इंडिया में किसी भी देश के कॉर्नर में आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपके पास जो है बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के तरीके हैं. अब जहां तक यूज केसेस हैं, सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर हो गया. एग्रीकल्चर में अगर आप सॉयल की कंडीशंस को देखें और उसके बेसिस पे आप रिकमेंड करें कि कौन सा फर्टिलाइजर, पोटेशियम या फॉस्फोरस या कौन सा केमिकल डालने की जरूरत है, आप खेत में फसल की कंडीशन को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या वहां पर पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता है या नहीं है, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक वे में हो सकती है। हमने जो है वहां पर एक एंड्रॉयड बेस्ड एक एप्लीकेशन भी हमने डेवलप करके वहां पे लगाई है, तो किसान अगर चाहे दिल्ली में बैठा हो या लंदन में बैठा हो, वो अपने खेत को वहीं से बैठे हुए कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन में आपको खेत की स्थिति पूरी तरह से पता लग रही है। अभी गाँव में तालाब है, तो तालाब में मछली पालन के लिए जो आपको योगदान चाहिए, तो वो भी आपको कितनी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वेदर फिश को सर्वाइव करने के लिए ठीक है या कम है, वो आपको पता लग जाएगा
1: जी।
0: आपको जो है सर्वेलेंस है वो आप कर सकते हैं, हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दिल्ली में, अगर आप एक HbA1c टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ACG कराते हैं, तो आपको रिजल्ट्स कब मिलते हैं, नॉर्मली आपको रिजल्ट्स अगले दिन तक ही मिल पाते हैं, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखा दिया कि 15 मिनट के अंदर में आपके मोबाइल फोन में जो है आपका ब्लड टेस्ट जो है उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, ECG के रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे, और आप टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जो विशेषज्ञ है वो लंदन में बैठा हो या बॉम्बे में बैठा हो या नागपुर में बैठा हो कंसल्टेशन कर सकते हैं, और डॉक्टर की तरफ से जो रिपोर्ट है वो आपके स्क्रीन पे या जहाँ पे आप गांव में बैठे हैं वहां पे आ जाएगी, और वहीं पर ही आपको मेडिसिन भी दी जा सकती है
1: जी।
0: तो ये सारा प्रोसेस जो है 15 मिनट में हो रहा है। तो गांवों में इस तरह की सुविधाएं अगर आप, अभी हमने एक गांव में किया, महाराष्ट्र सरकार जो है 3580 के लिए प्रयास कर रही है, और इसी साल में 75 इसी तरह के गांव जो है वो तैयार होने जा रहे हैं
1: जी। थोड़ा सा फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क क्या एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे, और इससे डिजिटल डिवाइड को किस हद तक हम खत्म करने में सक्षम होंगे?
0: हमने सप्तावरी में जो इम्प्लीमेंटेशन किया था उसमें हमने सैटेलाइट का भी एडवांटेज हमने लिया था, 4G प्राइवेट नेटवर्क सैटेलाइट के से कनेक्टिविटी थी, और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बैंगलोर में, ये पूरी हमने चेन बनाई थी। सैटेलाइट में हमारे ही कुछ प्लेयर इस वर्क इस तरह भी प्रयास कर रहे हैं कि वो 100 के करीब लियो ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़े, उनके थ्रू पूरे देश के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का जो है योगदान मिल सके। और एक में बहुत आपको आश्चर्य भी हुआ कि नॉर्मली सैटेलाइट में रूफ टॉप के ऊपर में डिश एंटीना लगते हैं और आपको स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिसके माध्यम से आप सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करते हैं। हमारा एक डोमेस्टिक प्लेयर ने उससे इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी, 15 अगस्त को ही विल बी रेडी विद अ सॉल्यूशन जिसमें कि आपको ऑर्डिनरी फोन पे भी और वो भी घर के अंदर बैठे हुए भी आप सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास दुनिया में किसी और देश में अभी आज तक नहीं हुआ है
1: जी।
0: ये इंडिया में होने जा रहा है
1: जी। राकेश जी, अंत में आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आज हम AI, ओपन RAN और इंटरनेट थिंग्स या फिर क्लाउड जैसी तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो टेलीकॉम सेक्टर से इनसे क्या उम्मीदें हैं और आने वाले वर्षों में भारत को इनसे किस तरह से लाभ होगा और भारत कैसे वैश्विक स्तर पर अपने आप को इसमें श्रेष्ठ साबित कर सकता है?
0: आपने क्लाउड की आपने मेंशन करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेंशन करी, तो हमने जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है तो उसमें ये ऑलरेडी बीच में यूज किया जा रहा है
1: जी।
0: और हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया था, यूके एंड यूरोपियन यूनियन की एक टीम भी आई थी, 3 विशेषज्ञ 3 प्रोफेसर भी आए थे और उसके साथ उन्होंने हमारे साथ एक MOU किया, और जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसको लीस्ट डेवलप कंट्रीज में डेवलप प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इंडिया में एज फार एज द इंडस्ट्रीज कंसर्न पूरी क्षमता है, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं या डाटा सेंटर्स हैं, हर क्षेत्र में हमारे पास क्षमता है। सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काफी अच्छा काम कर सकते हैं
1: जी,
0: क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑर्डर बुक होती है, हमारे पास क्षमता है और ऑर्डर आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम पीछे रह जाएं।
1: राकेश भटनागर जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे दूरसंचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे दूरसंचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मलयालम वगैरह वगैरह कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा, चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला आंसुओं से सराबोर करता

मजबूरियों से हारो मत, उनका डटकर मुकाबला करो। इस फलसफे के साथ सोनू निगम ने करियर के कई आयाम तय किए। शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने, ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालें। फिल्म कल हो ना हो इस गाने के लिए सोनू निगम को मिला सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

इसके अलावा सोनू निगम को देश विदेश के अनगिनत पुरस्कार मिलते रहते हैं। लंबी फेहरिस्त है उन्हें मिले पुरस्कारों की। आइए सोनू निगम के कुछ मशहूर गीतों पर नजर डालें। ये फिल्म है रिफ्यू।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और संघर्ष विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश के भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकोण स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसी प्रकार का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिनों तक रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday.

0: The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. The Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. Delhi government has said that Delhi police will not take any legal adverse action against individuals who participated in the NEET UG protest demonstrations in the national capital, but those with criminal background will have to face action. The Home Department said that with regard to arrest or detentions, if already made in these cases, the process for reviewing the arrest and releasing the arrested persons will be undertaken expeditiously. A high-level meeting was held in New Delhi today under the chairmanship of Union Jal Shakti Minister C.R. Patil to discuss the resolution of the long-pending Mahanadi water dispute between Chhattisgarh and Odisha. The meeting was attended by Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha and Union Minister Tokhan Shahu and representatives of the Water Resources Department. India Meteorological Department IMD has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over Gujarat and Madhya Maharashtra for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over northern states Bihar, northeast India, Konkan, Goa, Odisha, Telangana, Madhya Pradesh and Rajasthan to the next 2 to 3 days. In Gujarat, severe weather warning has been issued across 13 districts including Ahmedabad, Anand, Surat, Navsari. Fishermen have been strictly advised not to venture into the sea till Saturday. We have a report.
1: In view of the severe weather warning, Additional Chief Secretary Dr. Jayanti Ravi chaired a high-level review meeting at the State Emergency Operations Centre to assess the administrative preparedness of the districts on high alert. District administration was instructed to operate 24/7 control rooms. Local authorities were also advised to deploy NDRF and SDRF teams in vulnerable low-lying areas as needed, while all the three wings of the Indian Army Forces have been kept on standby for emergency relief and rescue operations. The state government has directed districts to ensure timely evacuation of residents from low-lying areas to shelter homes. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
0: In Chhattisgarh, heavy rainfall over the past 3 days has caused several rivers and streams to swell across various districts. Odisha remains on high alert as floodwaters continue to swell the Mahanadi River system, where the season's biggest flood discharge expected to reach Mundali by this evening. In Keralam, rain alert has been declared in all the 14 districts. Orange alert has been issued in 5 districts. Prime Minister Narendra Modi today met with members of parliament from Arunachal Pradesh and Nagaland at Parliament House and discussed the prevailing flood situation in both the states. In a social media post, the Prime Minister said the central government will keep working with the respective state governments to address the challenges. The United States and Iran exchanged fresh waves of missile strikes today, raising fears of a wider regional conflict and dimming hopes for a quick resolution. After a brief lull in hostilities, the renewed attacks have heightened concerns that the fighting could draw in more countries. Jordan said it intercepted 5 Iranian missiles for the second consecutive day. Neeraj Chopra is qualified for the men's javelin finals in the Commonwealth Games at Glasgow. Javelin throwers Rohit Yadav and Yashveer Singh have also entered the finals. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे मुख्य समाचार पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की अमानवीय कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुईं। जापान के कुमामोटो भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई, 9,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने क्वालिफाई किया और ताइपे ओपन बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा और किरण जॉर्ज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। विश्लेषकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 125 से अधिक होने का दावा किया है। एक रिपोर्ट।
3: जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलियां चलाने और अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने एक बयान में कहा कि नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और POJK में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों का उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है। कब्जे वाले क्षेत्र में कराए जा रहे तथा कथित चुनावों के समय प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने पर अड़े हुए हैं। भारत ने इन चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
2: अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और संघर्ष विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। नए हमलों से अन्य देशों के भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि IRGC के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें सैन्य कमान केंद्र, मिसाइल और ड्रोन सुविधाएं, तटीय निगरानी केंद्र और रक्षा प्रतिष्ठान शामिल हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि केशन द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। ये ताज़ा झड़पें अमरीका के सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमलों के एक दिन बाद हुई है। हमलों में कथित तौर पर कम से कम 20 लड़ाके और 6 ईरानी सैन्य सलाहकार मारे गए थे। ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका के मिसाइल भंडार में कमी आने की खबर है। एक थिंक टैंक CSIS की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 महीनों में अमेरिका ने बड़ी संख्या में पैट्रियट और थार्ड वायु रक्षा मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इससे इन मिसाइलों का भंडार काफी घट गया है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लिस्टुक्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही ये हमले किए गए थे। जापान के कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मृतकों में 9 लोगों की मौत के कारणों की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनकी मौत भूकंप की वजह से हुई है या नहीं। भूकंप से यात्सुशिरो शहर में एक कागज फैक्ट्री की चिमनी गिर गई। मलबे से 10 लोगों को निकाला गया, जिनमें 8 की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। एक अन्य लापता व्यक्ति का शव भी आज बरामद किया गया। वहीं काशिमा कस्बे के एवॉन मॉल कुमामोटो में भूकंप के बाद हुए बड़े विस्फोट के बाद 12 लोगों को बचाया गया। इनमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रांत में 406

0: के प्रकोप से अब तक 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कांगो सरकार के अनुसार लगभग एक सप्ताह में मरने वालों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि इबोला अधिक तेजी से फैल रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार तक इस प्रकोप में 3,442 मामले दर्ज किए गए हैं और 1,521 लोगों की मौत हो चुकी है। ये प्रकोप पिछले अधिकांश इबोला प्रकोपों से अलग है, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार बुंडी बोगियो वायरस के लिए कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। इसने पिछले किसी भी इबोला प्रकोप की तुलना में अधिक लोगों की जान ली है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लेक्तुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित विकास परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। भूटान ने देश के विकास में भारत के महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान की सराहना की। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के तहत निर्मित थिम्फू इकोलॉजी पार्क और उलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। दूतावास ने बताया कि भारतीय एक्जिम बैंक और भूटान के वित्त मंत्रालय के बीच 4,000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण गारंटी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही भारत के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और भूटान के खेसर ग्यालपो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। इस अवसर पर भूटान की सरकार को 45 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। नीरज पांचवें जबकि रोहित और यशवीर 9वें और 10वें स्थान पर रहे। वहीं प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। चित्रावेल ने दूसरा, सिल्वा प्रभु ने तीसरा स्थान हासिल किया। ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अनमोल खरब, तानिया हेमंत और राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जबकि पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एचएस प्रणव हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला वर्ष 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की अमानवीय कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुईं। जापान के कुमामोटो भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई, 9,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में उन्नति हुडा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा और किरण जॉर्ज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Protests intensify in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir amid deadly crackdown by Pakistani forces. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Death toll from Japan's Kumamoto earthquake rises to 34. More than 9,000 people remain in shelters. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashvir Singh qualify for men's final at Commonwealth Games. And in Taipei Open Badminton, Unnati Hooda, Devika Sihag, Tanvi Sharma and Kiran George progress to singles quarterfinals. And now the news in detail.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने दोस्तों। दोस्तों रेडियो जो है ना वो बहुत अच्छा माध्यम होता है दिल की बात करने का। कैसे? देखिए अब आप हमें नहीं देख सकते, हम आपको नहीं देख सकते, और जो बातें स्ट्रेंजर्स के साथ अजनबियों के साथ होती है ना वो बहुत साफ और पाक होती है क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जी हाँ, सिर्फ हमारा माध्यम है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड, और यहाँ बातें होती हैं और दिल की बातें होती हैं। सिर्फ बातें ही नहीं, गीतों के माध्यम से भी आप बहुत सी बातें अपने साथ रिलेट कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। अब आपने मुझे नहीं देखा और मैंने आपको नहीं देखा, तो चलिए आज का ये गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का हर श्रृंगार आपके साथ है अर्पना। 10:31 और 50 सेकंड हो चुके हैं। आज के हर श्रृंगार में आप सभी का स्वागत करती हूँ।

बस दो लफ्जों की तो होती है दिल की कहानी जो कहनी भी इतनी आसान नहीं होती है। द ग्रेट गैम्बलर से ये गीत सुना अमिताभ जी और आशा भोसले की आवाज में। दोस्तों जो हम किसी को चाहने लग जाए ना तो उनसे मुलाकात तब तक पूरी नहीं होती जब तक दिल की बात ना कह दे, और अगर हम नहीं भी कह पाते ये दिल की बात तो भी इसका अलग ही मजा है, एक अगली मुलाकात का बहाना ढूंढने लगते हैं। इसे ही तो प्यार कहते हैं।

मुकेश और आशा जी की आवाज तुम्हारी कसम फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। जब तक मिलन ना हो जाए तब तक जैसे बेचैनी सी छाई रहती है, अगर ये मिलने की चाहत ही ऐसी होती है दोस्तों तो सोचिएगा जब हम मिल जाए तो क्या दिल को चैन मिलता है? जी नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि ये मुलाकातों का सिलसिला बस यूं ही चलता रहे और हम यूं ही मिलते रहें और बातें कभी खत्म ना हो।

0: जितना बड़ा रेट में हमारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसके कारण है अगर सर हमें एमएसएमई का मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई ने उद्यम पोर्टल खोला है, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं। वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसी में 40% महिला है सर। हमको बोलने के लिए कुछ होता है 40% अभी से ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया। इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेनर्स बनाया है। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों का पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत में सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया। अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले पेंच का पैसा लोगों एंटरप्रेनर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया। वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं। एंड किसके लिए एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना, यानी नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए, इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरे देश में महिला को एंटरप्रेनर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार ने जॉब दिलाने के लिए 19 पेंचरों से सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार मेला फंड बनाए, इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार के दिया है।
1: सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रयुक्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रयुक्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती
1: हूँ।
3: चेयरमैन सर, मैं अभी बताऊंगी कानून होते हैं हम मिटाए थे, और ब्रिटिशों का समय का कानून था हमारा देश में हमें नहीं बनाए थे, वो कानून हम ऐसे रखे थे, उसको हमने पूरा मिटाए थे। अभी 4 कोड़ में लाया है, इसमें बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में, और एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, यानी इक्वल वेजेस में इक्वल वर्क के लिए ऐसा हम किए हैं सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए, महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसीलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैं कहता हूँ कि ये 26 वीक का काम बढ़ा है सर, वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहले बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नई ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना है, उसका सुरक्षित नियुक्ति के लिए ध्यान रखना, ऐसे भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए फ्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रहे हैं। ऐसे ही सर हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट फॉर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखे हैं सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी।
4: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करते हैं, रोजगार करते हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी।
3: चेयरमैन सर, बिहार में ईश्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसी में अलग अलग तरीके का लोग है। ईश्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबर से सर, विश्वकर्मा कर्मी से, विज्ञान प्लेटफॉर्म वर्कर्स से, ऐसे सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते हुए है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स से, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: बोर्ड के सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
4: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: मिनिस्टर
3: दिया है, पहली बार महिला कोड में हमने महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में पहले बहुत साल से मांग का लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरे देश में लेबर कोड को लागू किया। वो लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान हमने रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए ओपन वेजेस देने के लिए इसमें सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्ज्वल देवराव निकाम जी।
5: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
6: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
6: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
5: चेयरमैन सर, उत्तर सभापति पर रखिए। थैंक यू।
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्ज्वल देवराव निकाम जी।
7: थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, while reply indicates that the number of beneficiaries, it does not indicate the quality of the legal assistance provided. So my pinpoint question to you, has the government undertaken any independent evaluation of the effectiveness of legal aid, including success rate, client satisfaction, or quality of representation provided to the beneficiaries?
5: Honorable Minister, धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चा हुआ, कितने लोग लाभार्थी हुए, ये जवाब उनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है। ये जिलों में भी काम करता है, स्टेट में भी करता है। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो फिर स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वो नालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं बिगत 3 सालों में, तो 2023-24 में हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये भी पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई

0: इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने नॉमिनेशन करवाया है क्या? मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे न्यायबंधु प्रो बोनो जो गरीब है, दूर स्थानों पर रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है। और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और उसका रिवोल्यूशन भी हम कराते हैं। कितने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए, और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंडिया जी।
2: थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के लिए स्थानीय भाषा और लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए?
1: माननीय मिनिस्टर।
0: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज है, अभी भाषिणी टू हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है, और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है, ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानता है उनके लिए क्या भाषणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे, विकास भी करेंगे, विरासत को भी बचाएंगे। धन्यवाद।
1: द हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट एट 2 PM।
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम।
2: विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रिजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नागरिकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नागरिकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akash Mani, the news read by Saira Mujtaba. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026,

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक

0: स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जय हिंद। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर अपने बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।